और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है?

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

En daar gaan we weer. Dance and party time.

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और नौ एन टी मारे बेरियो फन हैप्पी ऑल टेट एन थ्री सेंसेशन
1: चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन
1: फर्क नहीं पड़ता है शीशे की जवानी पे एक सुरूर सा चढ़ता है
0: वाह

0: नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जा।
1: यहाँ से पेश है सोनू निगम जी की आवाज में।

सोनू निगम जी की आवाज़ में हमने सुने सुने वालों सुंदर सा गीत। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज़ हमेशा सिक्के के करते हैं, आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, सिक्के यानी कि मंद ख्याल्त, आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बचते नहीं, सुना हमने और नहीं देखा।

श्रेया घोषाल और उदित नारायण जी की आवाज़ में हमने यहाँ से सुने सुंदर सा गीत। सुनने वालों, एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, और फिर एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और आगे में सुनने वालों, एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण होता है। एक उम्र होती है जहाँ पर रंग और रूप महत्वपूर्ण होता है, और फिर एक उम्र होती है जहाँ पर विचार महत्वपूर्ण होता है, फिर आगे में एक उम्र आता है ऐसे कि जहाँ पर सिर्फ साथ रहने के साथ महत्वपूर्ण देता है।

मोहम्मद अजीज़ अलका याग्निक जी और साथ दे रहे थे विनोद राठौर। ये सब मिलकर हमके सुनाए कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे।

कहते कि अच्छे कर्म अच्छे काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जैसे सूरज उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। आपको हम यहाँ से साथ लेकर चलते हैं आपके ज़्यादा ना वक्त लेते हुए।

लक्ष्मीकंद और आनंद बख्शी के साथ संगीत पर जो हमने सुने कविता कृष्णमूर्ति जी, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज जी से। अंधेरे में छाया, अंधेरे में साया, यानी कि हचखादियू, अंधेरे में साया और बुढ़ापा में काया हतलेखा, और अंतिम समय में माया हतमतरियल, किसी का साथ नहीं देता। एक बार फिर, अंधेरे में छाया, बुढ़ापा में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देता।

उदास ना हो ऐ जिंदगी, उदास ना हो ऐ जिंदगी, हम तो हर हाल में तुमसे खुश रहते हैं। जी हाँ, उदास ना हो ऐ जिंदगी, हम तो हर हाल में तुमसे खुश रहते हैं। कभी धूप अंधेरे में भी, कभी धूप अंधेरे में भी, जुगनों की तरह पल भर की रोशनी में जीने की जुनून रखते हैं।

लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ज़रा सुनिए जी। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन बस भूल जाएंगे। इसलिए, जी हाँ, इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित है, जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जी हाँ याद रखना, कि ये ज़िंदगी हमारी है, लोगों की नहीं।

मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिसे हो जाए बस वही खास है। और कहते हैं जिनके मन का भाव सच्चे होते हैं उनके हर काम अच्छे होते हैं।

से हम आपके लिए कुछ मिले जुले गीत चुन कर रखी हूँ सुनने वालों, और जरूर से इसे आप सुने और पसंद करें। तो बढ़ चलते हैं सुनने के लिए पहले जोबिन नौटियाल जी की आवाज़ में एक रोमांटिक सॉन्ग।

जिंदगी है तू, ये बात मैं दावा के साथ कह सकती हूँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझसा ना कोई है और ना कोई होगा। और ये बात भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हाँ कि आपसा, हाँ जी आपसा ना कोई है और ना आगे में कोई होगा। एक बार फिर नौ जो बे नौतियाल की आवाज़ में।

रात तक कट गए, सुबह हो गए और यहाँ पर हम भी रात के बाद सुबह आते हैं, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात फिर हो जाते हैं।

यह भी एक सुंदर शब्द है कि जहाँ जिसका दाना रहता है जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इस बार हम सुनेंगे, देखे तो अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज में। चलने लगी है हवाएं

अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज़ में हम यहाँ और मिलकर सुने हैं। कितनी खूबसूरत से गाए हैं कि चलने लगी है हवाएं, वाकई में हवाएं भी चल रहा है। और हमारे इंस्ट्रूमेंटल को क्या हुआ, आ गए। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल तो आ गया, सुने वालों। दो लाइन के शब्द हैं यहाँ पर, कितनी उसमें बातें हैं जो हमको छू जाते हैं और वो भी हमको भी ज्ञान की रोशनी भी दे देते हैं। तो ऐसे दो लाइन का ये लिखा हुआ है कि अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें। अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं यानी कि सेल्फ, सिक्स सेल्फ, अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है।

हम यहाँ से सुने हैगा कुमार शानू के आवाज में। हाँ, और कुमार शानू ये फरमाए थे कि चोरी चोरी दिल तेरा हम चुराएंगे। क्या बात है। जिंदगी आईने की तरह, जिंदगी आईने की तरह है। आईना यानी कि स्पीकर, शीशा। जिंदगी आईने की तरह है, ये मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे।

यहाँ से एक बार फिर हम और आप सुनेंगे कुमार शानू की आवाज़ में, कुमार दा की आवाज़ में। चुन से तो मालूम हो गया कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगी।

मराठी संगीत कुमार शानू जी ने हमको सुनाए हैं कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगी।

इश्क की खनक, उसके इश्क की खनक मेरी चूड़ियों में खनकती है। उसके एहसासों की महक, उसके एहसासों की महक मेरे रूह में महकती है। चाहे कितना ही छिपा लूं, चाहे कितना ही छिपा लूं, आँखों में कहानियाँ झलकती है।

और यहाँ से आपको हम एक बार फिर लेकर चलते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सुनने के लिए। और क्या ये फरमाएगा तो हम यहाँ साथ में मिलकर सुनेंगे, मेरी को भी खबर नहीं है।

कुछ लम्हों की ज़िंदगी है, कुछ लम्हों की ज़िंदगी है, जी लो इसे खुश नसीबों की जैसे। हाँ सुनने वालों, जी सुनने वालों, दोस्तों भाई बहनों, जी लो इस लम्हों को खुश नसीबों की जैसे।

मैया जिसकी घर के दिए में तेल नहीं, वहां जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं

सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है। आप रिश्ता नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो। भाई बहनों, हमेशा टेंशन में तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हो तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो। मित्रों, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए।

मित्रों, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे मित्रों, उतना ही खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे जिंदगी में। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। आप खुद जानते हो मित्रों, आप इसमें गलत फहमी ना लावे कि हम नहीं जानते, हम ना जानत रहेली। खबरदार, सब चीज तो जाने हैं, फिर भी टाल मटोल कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारो मित्रों, कर्म को सुधारो, यही सबसे बड़ी बात है मित्रों, कर्म को सुधारना चाहिए।

मित्रों, भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है। मित्रों, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मित्रों, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है, मुनि के समान है, संत के समान है। मित्रों, ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

साथियों, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिसमें भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। मित्रों, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी या भक्त की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। मित्रों, अचल होती है, डगमग नहीं होवत है। जैसे आप अपने जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भक्ति करते रहना। मित्रों, भक्ति करते रहना।

प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में यानी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मित्रों, स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे। वाह वाह, क्या बात है रे, क्या बात है। मित्रों, तो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे मित्रों, तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे चापलूसी लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए। मित्रों, मित्रों, एक भगत सांवरिया के पास बैठकर क्या सुनाता है, सुनिए।

मित्रों, कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते ना, या करते हैं पता नहीं, आप खुद जानो। मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। तो गधे को घोड़ा आप नहीं बनाते हैं ना। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है मित्रों, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप भी ऐसे हैं, खबरदार। मगर मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, जानता हूं मैं। भगवान कहते हैं मित्रों, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना। विशेष करके लड़की लड़कियों जवान है ना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे, जीवन खराब कर देंगे, खबरदार पास हो गए। तो मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना मित्रों, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं मित्रों, बहुत करीब होते हैं। वही लोग आपको ज्यादा चोट पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहां कहां ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूं कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

साथियों, मैं इस भजन के माध्यम से उन लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ जो इस भजन में बतलाए हुए श्रेणी में पढ़ते हैं। आप बड़े ध्यान से

0: Costa Rica Mangiare.
1: उज़्बेकिस्तान से ये सुंदर सा गीत आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है। ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ लाए, जहाँ पे भी हो, जिस वक्त पे भी जहाँ आप रहे, वहाँ के माहौल जरूर से, वहाँ के महफिल, वहाँ इर्द गिर्द जो है, जब जिस समय बस मुस्कुराते हंसी खुशी में बीते। यहाँ से कुछ दो लाइन आपके सुनाना चाहती हूँ। लाइन के बोल ऐसा शुरुआत है, घटिया लोग, घटिया लोग। उसके एक उदाहरण है, उदाहरण की जगह से हम आपको सुनाएंगे कि घटिया लोग कैसे होता है। उदाहरण के रूप में ऐसा है कि प्याज को जितना भी प्यार से क्यों ना काटे, आंखों में आंसू ला ही देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम कितने भी प्यार, सम्मान और इज्जत दे दे, लेकिन वो आखिरकार अपनी घटिया हरकतें दिखा ही देते हैं। तो प्याज के उदाहरण से घटिया लोग के एक उदाहरण दिया गया है, तो आपसे हम यहाँ पे बांट ली है। जी हाँ, आपके लिए अल्ताफ राजा जी।
2: जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को। मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानू या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में चुप रहना ही अच्छा है।

उसने पराए घर में जाके अपनी सेज सजाई है। अब वो मेरे साथ नहीं है, मेरा साथ निभाने को मेरे आंसू साथ है मेरे, उसके साथ

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त, जीना इसी का नाम है। तो चलो हम आपसे बता दें कि जीना किसका नाम है। जीना इसी का नाम है कि शरीर को चंगा रखो, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, जेब को, जी हाँ जेब को गर्म रखो। जेब को गर्म रखो यानी कि ढेर से पैसा उसमें होना चाहिए। और आँखों को, आँखों में शर्म रखो। जुबान, जुबान को नरम रखो। जी हाँ जुबान को नरम रखो। दिल में रहम रखो, दिल में रहम रखो और क्रोध पर लगाम रखो। व्यवहार, व्यवहार को साफ रखो, व्यवहार को साफ रखो और खास तौर पे होंठों पर, होंठों पर मुस्कान रखो। अगर आपके होंठों पे मुस्कान जो आ गए ना, तो आपके आंखों में शर्म रहेगा, जुबान नरम रहेगा, दिल रहम रहेगा, क्रोध पर आप यूं ही यूं लगाम रख पाओगे और व्यवहार आपके तो साफ हो जाएगा।

शामिल कर दिया गया है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में पंकज उदास जी को। घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। आपने ठीक सुना, घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। दर्पण को कहते हैं आईना, स्पीकल। कहाँ पर आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए? पहला है मुख्य द्वार के सामने दर्पण ठीक नहीं है लगाने में। मुख्य द्वार यानी कि होफ एन खान, बैत के सामने यानी कि स्लाब कामर में आपके बिस्तर जहाँ है उसके सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। बैत के सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगाना ठीक भी नहीं माना जाता है। दक्षिण यानी कि सौदन। दर्पण को अंधेरे में रखना ठीक भी नहीं माना जाता है। और कमरे में बहुत सारे दर्पण होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सीढ़ियाँ के सामने दर्पण लगाना भी ठीक माना नहीं जाता है। सीढ़ियों के सामने दर्पण होना ठीक नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण का इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण। रसोई में दर्पण लगाना ठीक नहीं है। और दर्पण का मुंह नीचे की ओर रखना भी ठीक नहीं है। यानी कि मुंह नीचे यानी कि स्कॉइंस। और दर्पण को गंदा या धूल भरा रखना भी ठीक नहीं है। हेडब्रैंक अले मार नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ओक नेगेटिव एनर्जी। ये सब बात आपको बता दिया गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार।

पंकज उदास के आवाज में कि आइए ये मौसम आपके लिए। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपनों भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ।

जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है ना, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है तब सामने वाले चाहे आंसू बहाए या कसमें खाए, असर नहीं होता। नो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। आज में जी लो, आने वाला कल का पता नहीं, पर भरोसा में है हम जीते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत में या किसी से ईर्ष्या झगड़ा कर

पंकज उदास, पंकज उदास के आवाज में सुंदर सा गजल पेश किया गया। क्या क्या दोपहर में सोना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मेदाख दुच, इस दैट वेल खुद इज द फ्राग। क्या दोपहर में सोना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर से सोना चाहिए। तो आपको यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि क्या फायदा है अगर आप दोपहर में थोड़ा से सो जाए। दोपहर में 15 या 20 मिनट तक आप जो सो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता देते हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। द एनख एख्त आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट तक सोते हो तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दिस हेल्पफुल फॉर यू लिखम, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है, दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड रोग का खतरा भी कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है। Door 15 tot 30 minuten te liggen op een middag heeft zijn voordelen. Moet je 's middags slapen? Een paar voordelen wat het slapen 's middags doet. Als je 's middags 15 tot 30 minuten slaapt, is het goed voor het lichaam. Onze hersenen werken beter. Middagslaap verbetert het geheugen. Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt af en het hart blijft gezond en stress vermindert. Dus het heeft zijn voordelen. Als u in het gelegenheid bent, gewoon doen. Even 15 minuten, 10, 15 minuten hoog uit 30 minuten. Als u uitrust, bent u opgeladen. In sommige landen heb ik gehoord en ook gelezen dat ze tijdens het werk gewoon moeten stoppen om 15 tot 30 minuten om gewoon uit te rusten. Ze zijn gewoon verplicht om dat te doen, om het te kunnen opladen om verder te kunnen. और वैसे हम सूरीनामों में भी मेदाह दुच लेते हैं।

क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। हर पल महत्वपूर्ण है, इसे हमें भी महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। आराम को करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा के साथ।

ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलो बहुत अच्छा लगता है। श्रवण की है हमने हनुमान चालीसा के साथ, बढ़ते हैं आपके लिए सुंदर सा विष्णु भजन, आपके लिए प्रस्तुत है

श्री हरि विष्णु हरि नाम से दिन सजे, हरि नाम से दिन सजे, हर कार्य में शुभता बढ़े। विष्णु कृपा जो साथ हो जाए, विष्णु कृपा जो साथ हो जाए, जीवन की नैया पार हो जाए। श्री हरि का नाम जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, श्री हरि का नाम जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब हम हर काम को उनके शरण से शुरू करते हैं तो कार्य में न केवल सफलता मिलता है बल्कि उनका फल भी पवित्र होता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप

सुंदर अति सुंदर श्री हरि विष्णु प्रिया जो है उसका भजन आज आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है अपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आज के दिन, आज के ये पावन सुबह, आज के ये पावन सुबह आपके जीवन में शांति, संतुलन और सेवा भाव भर दे। जब मन में हरि का नाम और कर्म में प्रभु का स्मरण हो तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है।

की असीम कृपा बनी रहे आप पर और आपके परिवार पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।

आपका इष्ट है, बस उसी में आप अपना मन लगा लो। जिसने अपने आप को श्री नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया हो ना, कर दिया है, वो मनुष्य ही धन्य है, उसका जीवन सफल है, उसको नारायण अवश्य प्राप्त होंगे। जगत के पालन करता, श्री विष्णु भगवान, भगवान विष्णु की कृपा हम सबके ऊपर बने रहे, हम सबके ऊपर सदा रहे। श्री कृष्ण की वाणी, श्री विष्णु भगवान की वाणी है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पिछले किया, गया कर्मों का फल है। श्री कृष्ण जी की वाणी है।

वहाँ चैन है और विश्वास है, यहाँ से हमने श्रवण की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है मन को निराश ना करो, मन को निराश ना करो मेरे प्यारे, बस श्री विष्णु जी पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो विष्णु प्रिया, इस बात का एहसास तो कर लो। श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से हम सब पर उनका कृपा रहे। जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण होता है, वहाँ कर्म, वहाँ धर्म, शांति और समृद्धि का वास होता है। और कहते हैं कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? तो प्रेम का वास्तविक अर्थ ये है, सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी

छोटा बड़ा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब

भक्ति है ना मेरे प्यारे सुनने वालों, जहाँ भक्ति है वहाँ नारायण स्वयं विराजमान होता है, और जहाँ नारायण होते हैं ना वहाँ हर कष्ट खुद ही मिट जाता है। केवल विश्वास होना चाहिए। धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में, और मान सम्मान केवल एक गलती में खत्म हो जाता है। धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में, और मान सम्मान केवल एक गलती में, एक गलती से एक गलती में खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे सुनने वालों, इसलिए इन चीज़ों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भक्ति भक्ति बुद्धि से होता है, जुबान से सुंदरता है। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधरता है।

छोटा सा संसार हरे आ जाओ एक बार पुकारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। प्रार्थना की शक्ति से दुनिया का हर विकार समाप्त किया जा सकता है। प्रार्थना की शक्ति से दुनिया का हर विकार प्राप्त समाप्त किया जा सकता है। जरूरत है केवल निश

श्री घोषाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। फ्रॉम द मूवी बेवफा से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और आपको सुनाने वाले हैं अभिजीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बेवफा से हमने पेश किए हैं इश्क छुपता नहीं छुपाने से। एक और गीत हम पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे मैंने सोच लिया।

अभी आप सुन रहे थे मैंने सोच लिया फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते हम प्यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी। हाँ मैंने भी प्यार किया है कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

शानू के साथ में अवका यज्ञ आपको सुनाने वाले थे हम यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की बहुत यार आती है फ्रॉम द मूवी कयामत से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं और आपको सुनाने वाले हैं कुमार शानू के साथ में अवका याग्निक।

वो लड़की बहुत याद आती है। अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ में अलका याग्निक, आपको सुनाने वाले थे। भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा से आप सुनेंगे

अभी आप सुन रहे थे भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे आपका यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं।

के प्यार में हम सवरने लगे अवका यज्ञिक आपको सुनाने वाले थे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने पूरा क्यों मानू फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं।

0: हाय, मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।

का याज्ञिक की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए हैं। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानू। क्रिमिनल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवीज, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते गली में आज जान निकला। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

0: सुन रहे थे बर्दाश्त नहीं कर सकता के और सुनिधि चौहान आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हमराज से हमने पेश किए हैं दर्शन द वंडर कार इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ लाला रे
1: हे यू गाइस लिसन टू मी बेबी से ओ ला ला ला

From the movie Darshan, The Wonder Car, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं उल्लालारे के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। दिल कह रहा है, From the movie दिल कह रहा है से हम पेश करते हैं और ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे दिल कह रहा है। ओ जाना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम से हम पेश करते हैं।

उदित नारायण अल का यज्ञिक के और कमल खान आपको सुनाने वाले थे। चलिए हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मौजा ही मौजा।

0: बच्चों, तुम्हारे माँ बाप बड़े शैतान हैं। इन्होंने बार बार झूठ बोला, मगर मैंने पहली नजर में पकड़ लिया था, है कि नहीं?
1: जी दादी।
0: देखा वही सच निकला कि नहीं?
2: जी दादी।
0: अरे बच्चों, हमारी उम्र में वक्त नहीं लगता, एक झलक काफी होती है ये पहचानने के लिए कि लड़के और लड़की के बीच

अभी आप सुन रहे थे मौजा ही मौजा, और मौजा ही मौजा के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी धूम 2 से। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते क्रेजी किया रे।

From the movie Keshe Hamnebeski, Hey, You're My Mind-Blowing Mahia, खा की है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ऐसा जादू डाला रे, आपको सुनाने वाले हैं सुनीरी चौहान।

0: From the movie Khaki से हमने पेश किए हैं ऐसा जादू डाला रे, मैंने प्यार क्यों किया। इसी फिल्म से आप सुनेंगे दिल दी नजर।
1: मेरी नर्स पटाएगा

शान प्रिया नीरज और शेषनायन आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया दिल दी नजर। प्रिंस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तेरे लिए। अतीफ असलम और श्रेया घोषाल जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

अतीफ असलम और श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले थे जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए फ्रॉम द मूवी प्रिंस से हमने पेश किए हैं। बिल्लू है फिल्म का नाम, सुखविंदर सिंह और सुनीरी चौहान प्रोग्राम में आ रहे हैं मर जानी।

अभी आप सुन रहे थे हैंगओवर तेरी आंखों का, हैंगओवर तेरी बातों का। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी काबिल से। हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते

0: मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। पवनदीप और अरुणिता आ रहे हैं प्रोग्राम में, चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग।
1: नहीं है मेरी जस्तजू,

0: अरे अब तो बता, क्या है तू?
1: तेरा आशिक। और तू?
0: अरे वो तो बाद में बताऊंगी।
2: अरुणिता और पवनदीप की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा सॉन्ग। सुनने वालों, एक बहुत सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है मेहंदी का रंग। निहाल और साइली आपको सुनाने वाले हैं।
3: बहारों का मौसम है, आज खुल के इकरार कर लो, अपनी मोहब्बत का आज इजहार कर लो।

0: मैंने मेहंदी का रंग तेरे नाम किया, निहाल और साइली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे प्यार करते हैं।
1: हेलो
2: हे
1: नील, मैं इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
2: यार आई एम रियली सॉरी ऐश्वर्या, मैं इस ट्रिप के लिए नहीं आ पाऊंगा।
1: क्यों?
2: लास्ट मिनट बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई है।
1: एनीवे मैं अकेली चली जाऊँ।
2: हेलो लिसन,
1: बाय
2: लिसन।

0: अभी आप सुन रहे थे प्यार करते हैं, शैली प्रोग्राम में आ रहे हैं तुम्हारी चाहते।
1: शमा बनकर जल रहे हैं हमारी धड़कनों में तुम्हारी मोहब्बत के परवाने। तुम जब हमें उन नजरों से देखते हो, दिल की कलम से हम लिखने लग जाते हैं आशिकी के कई अफसाने।

दिल में है तुम्हारी चाहते, अभी आप सुन रहे थे साइली की आवाज़ में। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम क्या मिले।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से भी आप सुन रहे थे तुम क्या मिले। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। पवनदीप और अनुनीता प्रोग्राम में आ रहे हैं, प्यारी जन्मभूमि।

अभी आप सुन रहे थे पवनदीप राजन और अनुरीता कंचीलाल जी की आवाज़ में प्यारी जन्मभूमि मेरी जिंदगी है तू।

मेरे नैना, अभी आप सुन रहे थे पवनदीप राजन और अनुरीता कंचिलाओ जी के आवाज़ में हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। सुनने वालों, समय हो चला है

0: अभी आप सुन रहे थे जो बोएगा वही पाएगा फ्रॉम द मूवी जैसी करनी वैसी भरनी, द टाइटल भी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश जी की आवाज़ में और म्यूजिक दिए हैं ब्रजेश रोशन जी। सुनने वालों चलिए जब चूड़ियाँ की बात होती है तो मिलकर सुनते हैं कि चूड़ियाँ क्या बोलती हैं।
1: No, the future drives

फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। अभी आप सुन रहे थे और जरा सा हम देखें आपको सुनाने वाले थे अमित कुमार, सोनू निगम, अका यज्ञिक, उदित नारायण और कविता कृष्ण मोटी जी। म्यूजिक दिए हैं जितिन और ललित जी। और जबकि चूड़िया की बात होती है तो ये भी हो जाए आप सभी के वास्ते,

फ्रॉम द मूवी यस बॉस से अभी आप सुन रहे थे चूड़ी बजी है कहीं दूर खन खन खन खन माही वे फ्रॉम द मूवी गर्ल हो ना हो।

0: अभी आप सुन रहे थे माही वे फ्रॉम द मूवी कल हो ना हो, आपको सुनाने वाली थी साधना सरगम जी के साथ में सुजाता भट्टाचार्य, उदित नारायण, सोनू निगम और शंकर महादेवन जी, और म्यूजिक दिए है शंकर एहसान लॉय। यू आर माय सोनिया।
1: व्हाट्स अप? व्हाटएवर।
2: हे, बट विज रोहन?
1: I don't know, and I don't care. I hate him.
3: But I love you.

अभी आप सुन रहे थे यू आर माय सोनिया, और आपको सुनाने वाले थे सोनू निगम के साथ में अलका याग्निक जी। म्यूजिक दिए हैं संदेश शंदीलीला फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी हम से हमने पेश किए हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर। चलिए ये हो जाए आप सभी के वास्ते, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते जिनका नाम राधा है।

फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, उदित नारायण के साथ में श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले थे। और ये गीत हमने पेश किए हैं उन सभी के वास्ते जिनके नाम राधा है। सोना कितना सोना है, सोने जैसे मेरा मन।

नारायण के साथ में पूर्णिमा जी अभी आपको सुनाने वाले थे सोना कितना सोना है फ्रॉम द मूवी हीरो नंबर वन से भी आप सुन रहे थे। कल होना हो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं प्रिटी वुमन।

0: फ्रॉम द मूवी कल हो ना हो से हमने पेश किए हैं प्रिटी वुमन। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और आपको सुनाने वाले थे शंकर महादेवन एंड रवि रेक्स खोटे। सी शावा शावा।
1: हाँ मैं देखता हूँ दादी, आप मेरे साथ आइए।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ फॉरगेट इट।

0: बस कीजिए, बहुत हो गया।
1: सही श्यावा श्यावा भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम से।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी है हमारे हिजरे का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिजरे के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ ब्लेस्ड संडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल नेक्स्ट टाइम।

Funny Radio. तो तुरंत हम चलते हैं, कहां चलते हैं, एक रीमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं हमारे दोस्तों। और ये रीमेक सॉन्ग क्या है और तुम तो जानते हैं, स्वीट मेलोनी का सॉन्ग है मोहन के मुरलिया। तो मोहन के मुरलिया तो बजते हैं भैया, और जब बजते हैं तो आपको हम कहते हैं गुनगुनाते रहो, और गुनगुनाने के बाद झूमते रहो, यानी कि इस सॉन्ग पर।

और अलामंग सुकु सुकु और कोंची सुकु सुकु भैया प्यार के सुकु सुकु के बातचीत हो रहा है हमारे सुनने वालों। एक बार फिर करते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आपके प्रोग्राम बनाना है आपके लिए हमारा काम, यही है हमारा प्यार का पैगाम। तो उसके बाद हम चलते हैं कि मेहनी लगा के रखना।

लगी है तेरी हाँ तेरू मेहनी कब लगते है जब शादी होता है ते। तो धर्मेंद्र सिंह ने आपको इस गीत को गाकर सुनाए हैं दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं। और आजकल भी बहुत योपी पोपी है, और वो कौन सा गाना है? शेकिंग बेबी शेकिंग।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन सुनने वाले को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारी मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम।

आंख को हम लेकर तुरंत चलते हैं अपनी जमजान की ओर, और हम चलते हैं तुरंत सूरीनाम की ओर, हम चलते हैं हमारी जनता सूरीनाम की ओर हम चलते हैं। तो सूरीनाम में भैया चिनुआ लोन सोना भी बड़ा जोर सा नाम है खोदे भाई, ना खाली जूका लोन खोदे है या का बोले ब्रासिलियन या दूसरा जात या आईम गोल खोले चिनुआ। सूरीनाम देश में भी सोना होना बड़ा जोर खोदे भैया, तो ऐसे चिनुआ सूरीनाम देश में सोना खोद के और फ्लिक लेके आयल है सोरखन हो परे, सोरखन हो फ्लिक फेल्प उतरल है। हाँ ये बातचीत हो रहा है आय के, यानी कि उतरल है सोरखन हो फ्लिक फेल्प परमारिबो में बेनालान से आयल है और 4.5 किलो सोना रिव खोद लेके आयल है भैया चिनुआ। तो उतरा सोना पाई से प्लेन लेके फ्लिक लेके आयल लोग था सोरखन हो पे 4.5 किलो रिव खोद में से बेनालान से आयल है। और बात में उस सब एगो त्योता फिट्स में बैठले घरे जाई के भैया, अब घरे जात रहा भैया, रास्ता में एगो त्योता आलियोन आयले जेमा 3 गो लुटेरा रहा वापन ले के भैया कटली से ले के, और बोले हैगा 2.5 किलो सोना ले के फरार हुई गे है रिहती खोम्पर स्त्रांत में। तो पारा मारी भूमि का रास्ता का नाम खोम्पर स्त्रांत, हुआ पे लेके ही भगल है भैया 2.5 किलो सोना ले के भगल है। एकर बारे में अनखिफ्त भइल है तो सिपाही खोजबीन करे है कि के सोनवा ली से भैया, यहाँ बतावे है कि सोना 2.5 किलो लेकर लुटेरा भाग्य भाई। तो बोले नारे ऊपर फालखिंग से नारे तो खोम पर स्त्रांत अनखिफ्त भइल है, ऑफस्पोरिंग अनहोडिंग बिना भइल है, खाली ऑफस्पोरिंग भइल है। और जैसे जैसे इसके बारे में खबर रहेगा आप लोग को हम बताए, लेकिन तुई है ना हल्फ की न सोना रू बारा ढेर है भैया। तो भैया गया दिन भी आ गया हमारा प्रोग्राम में, जन्मदिन बधाई हो। तो यहाँ पर और आगे हम चलते भैया, एगो औरत के समय लाश ले पाई से भैया रवि, और ये पाई से सिरालको वेख कहीं सूरीनाम देश में, और एक औरत के लाइक मिलल है और वो गंधात रहा लाइक वा भैया, गंधात रहा मतलब कि वो अनबिंडिंग हुई रहा कई रोज से मारा पड़ा रहा हुआ पे। तो जो हुआ सब गैल है तो पाई से औरत के बिना कपड़ा के भाई नंग ढिनंग औरत हुआ पे पाई से, और बतावे फोकस इसते इन्फॉर्मेशन बोले एगो आदमी है अब सुख ना क्रैदन उगे लहा तू जाने हैं सबहन घास भूसा बहुत जोर जुका लोन तूरे हैं दवाई वाई बनावे के। तो के सब हम बोले क्रैदमान, तो ये क्रैदा गैला अपन जंगल में खोजे तब ये लैकवा पाई से, और बताई गई हैगा तो संस्कृत लेखा फनन फ्रो, और बताई गई हैगा कि अने जब उके नंग ढड़ंग मिलल है द इज द कांस खरोद नाम लग दैट इज मिस ड्राइव इन इट्स इन इन दिस मोर्स पेल बोले तर प्लाट्स वेर लीफन लोग से लेखा फन फ्रो आन खतरोफन, और बताई गई हैगा दी इन हु वेर है बतरोकन इस बाई दिस साक वर्ड ना ऑन द सोख। अब सिपाही खोजबीन करे कि कौन के मारी से भैया, बताए फ्रॉम में तो लिखते हैं क्लियर एन खलात हार, तो ये जुका ना भैया तो इंगी हुई नहीं का बोले ब्रासिलियन हुई कोई हुई, बतावे लिखते है क्लियर एन खलात हार इन दिस साक के फलास नो हिन ऑफिशियल फॉर्मेशन आनगिफ्ट गदान। तो कर मतलब वो जुका ना भैया हिंदुस्तानी हुई मलिनी हुई बोले चिकन बार है। तो ऐसे बातचीत हो रहा है हमारी जनता, जैसे जैसे समाचार रहेगा आप लोग को हम बताएंगे। अब देखो भाई यहाँ और बात है, ओएम भैया ओएम जोन है तो लोग जानो है
हम आप लोग के बताए थे कि एगो औरत रहा गयानीज रहा अपन स्टीवसोन के आंड बरिश के स्टीवसोन के आप लोग को बता रही पुराना साल के बात है, पुराना साल के बात है और तैयार रहा तो एगो द्रियन त्वेन तक यारख मामशेला ते ओकर नाम रहा तो और बोले हैगा एगो आठ बरिस के लड़का के को स्टीवसोन के जेकर नाम रहा येडन अमोर भोला ओकर लड़कवा के पीठी में भोंक के लड़कवा के मार ढारे रहा और ये भैला दोनों प्राणी में झगड़ा भैला कॉन्फ्लिक्ट रहा कालकिता स्त्रात में तो ये लड़कवा के आठ बरिस के औरतिया भोंक के मार ढारे रहा वार अखेंदे ने वो उनका मन लीफ लोग से लिखा फा ये दिन आन खतरोफन और बोले है लाख ऑफ्रॉन इन प्लस ब्लूथ एंड फरतूंदे खीन टेकन फा लीफन लड़कवा आठ बरिस के मर गए रहा। तो आप लोग के शायद याद हुई एकर बारे में आप लोग को हम न्यूज में बताए रही और आज ओके यानी कि अब ओके फोर्दर यानी कि अब ओके स्ट्राफ मिले ले औरतिया के दोस्तों स्ट्राफ मिले ले औरतिया के अब बोलियो कि कितना दिन के जहलिया ई पाई से आठ बरिस के लड़का के ई और झका बोले हैगा एकर बारे में बड़ा अपहेफ हो गया रहा सूरीनाम देश में दोस्तों। तो ई औरतिया के स्टीव मुदर हैगा स्टीव मुदर हैगा बताई गई हैगा देर तक यार के ओके सेल जहल मिलल है 13 बरिस के अप एस करे से जहल पुराना साल तो इरेशन 25 में ई 8 बरिस के लड़कवा के मार ढाड़े रा छोड़ी भोग के फोलखस एट ओएम वास एट दी आफन हेफक ऋषि और स्थान तुसन द फादर फानेसला तो फर और बताए गए हैं अपाउ एंड दिन फ्रेंडेन मांशेला आदमी एक नाम रा अपाउ और एक वाक नाम रा मांशेला और इतना एक्सकालेर भैला ना है चल अल्कोहल हाद खनित दारू ढकोल ढकोल दोनों पर दोनों लड़े हैं और जाए के आठ बरिस के लड़का के और ये जान ले ली भैया इतना फुकदूब देखे ला इतना मोही लगे लड़कवा कोई के दे देवत पोस लेवत भैया के लड़का बिगी ही आदमी कुत्ता बिलार पोस ले वे है इतना अच्छा लड़का सब कोई पोस ले वत भाए और जाए के आठ बरिस के लड़का के पेटी में और छोड़ी भोग के ये औरतिया मार ढाड़ी सो स्टीव soon raha el verklaring van de vader bleek dat de haven aanvankelijk respectfully maar de sfeer omsloeg nadat zijn vriendin zich eraan stoorde dat hij alcohol aannam van een buurman bole auratia bole tu adamiak bole tu kahe gele buurman ke daru pile batte daarna ontstond een woordenwisseling bole de verdachte ging volgens de woning binnen en sloot zich op getuigen verklaarde ki auratia vernieling aanrichtte in de woning en een mes uit de keuken pakte. Daarbij zou zij hebben geroepen dat zij de jongen wilde doden. Kort daarna brak de vader de deur open en trof zijn zoon in de slaapkamer. Toen het ja, jagra kalera, ki okar anamia gela buurman lage daarop pie, aur aard badis ke ladka ke jai ke, jan se maar de ise. Ladkwa ya oratiak na raha, u ladkwa raha voor andere huwelijk. Met de 8-jarige jongen werd nog korte tijd een teken van leven waargenomen. Bolle hij overleefd ter plaatse van gevolgen van de steekwonden in de rug, waarbij zijn linkerlong werd geraakt. Volgens een medische was er geen sprake meer. Ja, toen Ibari Doekke baat, een buurman die eveneens bij de gebeurtenis betrokken raakte, bevestigde tegen de politie dat hij de verdachte na incident heeft vastgehouden tot de komst van de politie. और बीरमान पीपा कल्ले से तो ऐसे बात है बड़ी दुख के बात है दोस्तों बहुत दुख के बात है आठ बरिस के लड़का के ओ एम एस दर्तक यास टेकन टेकन स्टीव मुदर फॉन दो स्टीकन तो ओकर बाप के संगे रहे हैं और ओकर लड़का के आठ बरिस के जान से मार दी से हमारी जनता बहुत बहुत दुख के बात है। तो रोबी गयादीन के साथ है सीफ बी से चित्रा अवतार भी आ गया हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं साथ साथ धर्मेंद्र भी आ गया है धर्मेंद्र श्री भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं आपको बहुत बहुत स्वागत देते हैं सूरीनाम के लोग जितना हमारा प्रोग्राम की सुनते हैं आपको भी हम बहुत प्यार यहाँ से देते हैं। तो अब देखा भैया वापन जबरदस्त सूरीनाम देश में मिलल है और कौन वापन मिलल इलाखाल वापन मिलल है इलाखाल वापन मिलल है एगो पुलिस ब्यूरो के नाम बा पोस्ट है रेडी दोती
तो रेडी दोती जो ने हमारे जनाब लाका वात्रा कंती दोस्तों तो हुआ पुलिसी कंट्रोल भले रेडी दोती पारा में तो बताई गई इलिखाल बंदूक दुई को मिले लेगा बंदूक के लाई मिले और साथे साथ दुर्योक्ष मिले भैया करिया निशान तेरानों में दुई आदमी के पकड़ान है और बताई गई हैगा रेडी दोती में ही मिले योगदन सफाना में Tijdens de controle van een voertuig trof een agent in de dashboardkastje een transparante plastic zak aan met een substantie die op marihuana leek. Ja, op een 30-jarige bestuurder heb ik gezegd, op een bijrijder heb ik gezegd, ja, geweer middelen, kolf zaten, scherpe patronen, op een ECT heb ik gezegd, ja, het hier over, ja, op een ECT gaan, ja, van, ja, PK heb ik gezegd, ja, AOM waarschuwt, cultuur op traditie is nooit excuses voor seks met minderjarigen. Deko bhaiya minderjarig bole cultuur to jane saban bole hamal cultuur me hega ke minderjarig ke sange trou kar sake to jane benaland pe chota chota ladki ke saban biyah kar dewe ya admi ho ya ladka le le to lunju ka ke ladkan ko jano hai to aise baat hai baki bhiya om ka bole hega upambar minister ka bole hega tu chahe jon jat ke baate chahe jahan jon cultuur ke baate mo bole vet me minderjarig ke sange to ke seks ना चाहिए करके तो ये बात महाबली जेमी भी बहुत दिन बाद आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गया है तो भैया महाबली आपको भी हम स्वागत करते हैं इतना दिन बाद आइए हमारे प्रोग्राम में साथ ही साथ फनेसा दोस फनेसा भी आ गया है फनेसा आपको भी हम बहुत प्यारे हो उस्ताद के उस्ताद महा उस्ताद सुंदर हीरा लौंडा के नाच वाला भी आकर जुड़ गए आप सबको बहुत प्यार यहां से देते हैं और स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में जुड़ने को तो देखो भाई क्या हुआ बोले हैगा ओएम बोले है ना दुर्कलक बोले बोले कुलत्री त्रादिसी में ना है मेंदर यारख के संगे सेक्स करके द बूस का फॉलक ना आनलेडिंग फन अन रेसेंट स्ट्रफसाक एन इट फॉरऑल खरेक ऑफ द बस्केमर फन मेंदर यारखन ओएम बोले है culturele gebruiken, traditionele en traditionele overtuigingen om familieafspraken nooit worden gebruikt als rechtvaardige voor seksuele misbruik of andere strafbare feiten. Tegen toen jij nega, deze banka bole hega, bole palwar bole, beti wat heb jij kardi, je beti wat heb jij kardi, tu minder jarig baate, mag niet. O bole, betaalwe hier, o hem bole bole, usap excuses na hè, ongeacht de achtergrond van de betrokkenen, bole tu jij John baate, bole wetboek bole hè. सबके कानून एक है सेक्सुअल हैंडलिंग वर्बल स्प्राक इज वन बिनन ड्रिंगर फॉर इट लिखाम बाय एन किंड यंगर देन 12 ईयर कुनन लेडन टू द गेवंगनेस स्ट्राफ ऑन मैक्सिमल 15 बरिस के 12 बरिस लड़की से और काबल तू सेक्स के लिए 12 बरिस लड़की के नीचे तो तुके मिनिमल 15 बरिस के जेल हुई सके भैया लोन सूरीनाम देश में तो याद करियो सूरीनाम के वे थे तो हमारे देखा जाए सूरीनाम से सुभाष भगवो भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं तो भाई सुभाष आपको यहां से ने दनहा शहर से हम बहुत प्यार देते हैं और स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेने को तो भाई सुभाष आप तो सूरीनाम देश में हैं तो वहां कानून जो है तो सबके लिए बना है ना कि जब तू झुका बाटो तो तुके मेंदर यार के संगे माखेगा लड़का बनावे के सेक्स करे के ओएम बोले बोले द वेट इज फॉर इधर इन ओक सेक्सुअल हैंडलिंग buiten een huwelijk met iemand van 12 jaar of ouderen, maar jonger dan 16 jaar zijn strafbaar wanneer sprake is van seksuele binnendringen. Oude Sorabar is een nietje via Binetje Hinkereke. Daarom staat een maximale gevaarstelling van Bara Bariske. Oude Bolle Gelboet van vijfde categorie. Het OM benadrukte dat zedendelicten tegen minderjarigen ernstig misbruiken. Bolle zijn er onder geen enkele omstandigheden worden gecontroleerd, mensen. Bolle controleert na hoe Bolle ze van tjoepe और कले वारफान उस स्ट्रफबार से बोले बिरकर्स ऑर्डर फैमिली लीडर गसाग ड्रागे से अंदर बर्ट्रोकने वर्डन opgeroepen सिग्नलन फ्रॉम सेक्सुअल मिसब्रेक रिस्ट नेमे एंड मेल्डिंग टू मेक बाय द पुलिसी ऑफ बफुक्ते इंस्टेंसेस बोले तो मेल्ड करियो सिपाही में और कि कोई अब देखो एगो यहां बतावे एगो रसेंट साग भाई ले और लुंडा का नाम बा सनाईपी बीते हुए हफ्ता में बताए रे भैया सनाईपी भैया तुलन से
भेजी आप देखो ये ते इस सनाई पी के भैया कपड़ियन जहलिया में भरी मार मार लाते लाते मारी से सुभाष लाते लाते मारी से ओणी का कर ले रहे को 15-14 बरिस के लड़की के स्वांगर कर ले रहा फिर 3 यारख में इसे किस स्वांगर कर दे रहा ते एकर माई गेल हा नालिश करे बाकी अपी का बोले है बोले तो हमार औरत है बोले तो लो हमें जहल ना दे से बोले हमार औरत है बोले फिर 3 यारख बोले हम लोग संगे रहे बोले हमार औरत है ओकर माई के नालिश कर दी छोड़िया के तो बोले हैगा आप के देर तक यारे के फरलेंग भैले जहल में बा और बोले अनफरक्लार इन तेकनो पुलिस से मेजिस एंड फ्रॉ इज एंड दैट्स इज सिंस हर देर 3 देर लासे में तारीफ और बताई गई है बोले 13 वर्ष के रहा तब से हमें उसे रेलाची है और बोले हैगा बोले है द केनर खाफ अंडर द मेजिक 13-15 jaar en sommige van een binnen de cultuur als vrouw worden beschouwd. Bole tera bari 14-15 bole ze van oké chota ladka ne isna dekhe ko aurat ne dekhe hai vooral wanneer de familie daarmee instemt dat botst echter met de nationale wet waarin iemand pas vanaf 18 jaar als volwassene wordt gezien. To pehle tulun jano bhaiya chota chota minder yaar ke ladki log ke se biya kar de ut raha to aap lon isse bachaye kar rehna जो कोई नालिश करे भैया तो झुट्टे के जइयो 15 बरी जहल में बैठ को और फ्रोईती करियो गाना गइयो ते ही तो अच्छा बात ना है। हम लोग के सुरीनाम देश में इरमा राम तहल सिंह आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। तो इरमा सुरीनाम में एगो राम श्री राम स्कूल है श्री राम स्कूल है आई हैगा बोत्रो मांकी वेख लिफोर्नो में बा जैसे यहाँ बताए गए भैया तो स्कूल में बड़ी बरैया गए भैया बड़ी बरैया गए वहाँ पे हाँ तो बरैया एगो मिलो स्कूल है ऊपर से 2 तारीख के एगो एंट एग्जाम रहा मिलो स्कूल में और बताए गए हैगा बरैया हुआ गए ले आल रिस्ट एंड कॉन्सेंट्रेट हुन एग्जाम अफलेखन बस्ता द फ्रीज द स्लाख्त ऑफर वार्डन फन देसर कट बरैया बड़ी कटाई काटी से लड़कन के भैया द स्कूल ऑन मोखलक एंड लोकलाइजेशन एंड वार हेड बाय इन नेस स्टार्ट गेफेस्ट द स्कूल हिप द अफडेलिंग बताए गए हैगा कमसरियात की करी से और बोले ना तो स्कूल बफेन से नाम उपमार बखराफ प्लास स्कूलिए के बगलिया में हुए कहीं पे भैया काबल बखराफ प्लास है और बोले बेरी पेन है दी दिख्त बखरूइत इस में होगा बोमन और बोले इवन इस इन द पंग फन अख्तर सेड फन द स्कूल दिख्त बखरूइत द स्कूल लेडिंग दूत एंड ड्रिंग बरूप तो बेरी पेन है और बेरी पेन में बोले भाई बड़का बड़का जंगल परल है भूस है स्कूल के पीछे भूस है तो वही मसे कहीं बरैया रहा और लाइक के लड़कन के काटली से तो लांटी के चाहिए बेरी पेनों सफा करे को इंतजार भैया और हुआ के बेरी पेन बहुत कम थी सफाफा हुए हैं वो और हुआ के बेरी पेन में स्वेरफट भी सूते भाई सफर हमारी बहू में और पास हुई है तो भैया उसे अपन अड्डा बनाई से और लेडिंग पे जइयो से बी के बेरी पेन भैया तो हुआ जो मट्टी के जहाँ हुए है हुआ ना देखा इतना बड़का बड़का घास भूस हो गए है लांटी जा कुदीन बांध कौन चीज काटे है और मायर से काटे कुछ से काटे दवाई मा अंदर हो तो औरत नहीं तो वही समय बेरी पेर में जनावर घुस घुट बैठे वरफान में से वो बीच अलमाल तो वो क्यों श्री नाम है नहीं फरकलाई का मैं नीदरलैंड एक बरूस अंदर सोम मैं वो क्यों तोक दरू फरकलाई बीच हम प्रात सीता गौरी चरण गजरी आपको भी हम प्यार करते हैं कि यहाँ के बखरा फ्लास पे तो जइयो भैया तो सोचिए हम कोनो पार्क में गई ली बाटी लाते उदार एलक से सोचिए कि हम कोनो पार्क में बाटी बांगी बनाओ लेने चिकन है चारों बगल फूल बोवल है भाई दिन भर आदमी हुआ काम करे स्कोन मार्क करे है और तू जइयो भैया तो हुआ तू बेरी पेन में बैठ के एक गिलास कॉफी भी पी पइयो भैया रिस्टक से अपन फैमिली से अफस्केट ले पइयो जो उनके मट्टी परल है घूम सके भैया इतना नेचर्स बनावल है दैट इज ऑल ऑफ बखरा फ्लास इन नीदरलैंड तो बोले जो नहीं कम सुरीनाम नहीं फरकलाई के मैं नीदरलैंड ऑफ अंडरसोम मर मेंसे एक से वत द वारहेट इज और यहां पे श्री राम स्कूल के पीछे जंगल लगल है जहां इतना ढेर बड़का-बड़का भूस है और बरैया जाए के स्कूल के अंदर के लड़कन के बड़ा छेदाई खींचे दी से वारफन हुआ पे एंड एग्जाम रहा मिलो स्कूल के
तो सन्नाम के जो रखे रिंग हैं उस सबसे हम बोलेला तरी तुलुन तरी चिक्कन इक्कन करियो जहाँ लड़कन हैं चारों बगल चाहे सफा करे अपने देश के सफाई जो नहीं अपने हाथ में है दोस्तों कोई और ना आए के करी ददमुते योरी जेल्फ खानदून रखे रिंग है पिकत ओवर मेंस मैया रखेरिंग तो जब देखियो भैया तो अपरे में लड़ते रहे हैं अपरे में लड़ते रहे भाई जब देखो तो लड़ते रहे हैं रखेरिंग में तो सोचो तो कैसे चीजों आ जाएगा कैसे चीजों आ जाए अब देखो दे अनामे भैया का बोले हुआ स्टार्स बखरूतिंग के तो इडेशन सेशन ट्विन तक के बांचित हुए हैं यानी कि स्टांस बखरूतिंग 2026 के वहाँ बातचीत हुए हैं और उतरे में जोगी भैया इरफान तनमी हैं भीषण बरिश से बैठल हैं और जोगी फ्रॉक स्टाइल करे हैगा वहाँ पे रखे रिंग से क्यों सुनी से कि जो खले से हुआ के आदमी लोन पलवार धरे ई धरे उ धरे तो एक बारे में हम लोग के फोर्स जो ने देना के और अश्विन अधीन के नामों ही लगल है तो अश्विन अधीन एके बोले तो के भवाई से तो के भवाई से बस इतने में अने का बोले हैं गया दिन मतलब कि अधीन जो फोर्स अश्विन अधीन हैगा देना के और जोगी के मौका ना दे इसे बतियाई के बस जोगी बोले है उसे बोले तू हमें मौका ना दे ले बतियाई के बोले कि तू सोचे सो मान बोले रहा कि तू सबसे सलेक्ट देना फोर्स बाटे तब तो अधीन के लगल गुस्सा भैया बस ओके जबरदस्ती बोले तू यहाँ से साल में से उड़ के तू भाग गया बोले तो कहीं यहाँ पे न उड़क तो अंतरिम कर दे इसे बोले नहीं तू माफी मांग तो अधीन यानी कि जोगी बोले कौन ची कह माफी मांग बोले माफी तो के चाहे मांगे के तो फिर यहाँ पे पार्लियामेंटारी जोगी ईबीसी में करवाने में बोली से बोले हैगा जोगी बोले हैगा मोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अधीन फॉर खान साल फॉर लातन अब बोले फिर यहाँ पे फरवेट अधीन पार्टी दख बाओ अब तो त्रिदेने ओपुसी ले ने बोले कि जब ओकर अनमी फिर यहाँ पे यानी कि एनडीपी के बोले हुआ पे चिल्ला है जब कुछ करे तब बोले ओके ना बोले और दो अब दस आके बोले लाच खून प्रात अब बोले जब हम एगो बलंग रेक पूछे तब बोले बेर हमें काटे बेर हमें काटे है और बोले कि जो ने हम अब स्थान पाए ग्रुफो आई क्यों हमें निकाल के बहरे करे बोले वही चीज बोले जानबूझ के करी से जोगी स्टेल दन अधीन द फोर्सेटर स्टूल सो मुतर फरलातन आसे द पार्लियामेंट नीट ओपन करेक्ट एन ऑन पार्टीडे गवेसे कान लेडन दार भी बना दुक्त रहे द क्वेस्टी फॉर हिम नो नीट इज अफ्कस्लोटन एक बेन नोग नी क्लार मेट देसे साक तो ई बात है जोगी के हमारे जनता और अश्विन अधीन के बातचीत हुए है हमारे दोस्तों और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेके चलीला सिपाही लोन भैया सूरीनाम के सिपाही ना सबके विश्वास ना रहेगे है विश्वास ना रहेगे भैया हीरा हाँ ड्रग्स के कारोबार करे भैया तलोन जानो है संदरई पे पकड़ा रहा एसएलएम के मोतर के नीचे लुकवाए रहा कई सिपाही पकड़ा ने भैया अभी यहाँ पे देख एक बात और है सिपाही पकड़ी एगो लौंडा के हाँ तो ओकर माई सुनी से कि सिपहिया घूस लेवे है सिपहिया घूस लेवे गो बड़ी खादीर कि और लुंडवा के पकड़े रहा दृश्य के साकोक में तब मैं वहाँ गए है सिपहिया लगे बोले हमार बेटुआ के तू छोड़ दे बोले तो के हम पैसा दे बे ब्रिगेडियर फन पुलिसी एमएफ के बोले है तो ओके बोले हम तो के पैसा दे बे तो ओके बोले है 2500 यूरो

Haar dus toch. Toch boleh arai het jaar 2500 euro. Boleh cahinga oke DWK. Ta iya ratia bicari apan bitua ke chodawe khatin. Sade 1200 euro. Oke deze. Zij maakte daar op 1250 euro over. Met de afspraak dat het resterende bedrag zou worden betaald zodra haar zoon was vrijgelaten. Afspraak Razi Payak hem dikte hem over Makrela. 2500 paard hajar euro wat ook db. En 2500 euro ham ook db. Maar je bent wat chod jij tap. Bakke i bericha derwa. Bent wat ke na chod op chod paise. Malum na hai kahai khatin. Bakke u na chod pa hoi se ke ukar upar admira hoi. Kuch kyaaren i na chod paise. 2 tarik juli ke. Arik jani ki. I is koutwa kuchra kapai betwa ke voor de rechter chal ke hechnagnes van 30 dagen is verleng ab mamai bhaiya bahut talur khastal to ge tab is koutwa bole je tu hamare betwa ke na chhodai pehle bhaiya hira ta hamar 1250 irwa lautad a tu jane hai कभी कभी कोई के जेब में जब पैसा चल जाए भैया तो चपक जाए ना निकल के फिर तरक जाए और नहीं बोरो होई के अंते चल गए है ओ बतिया है तो सीता गौरी चरण ना तो ई अब सिपाही वेकर कर रोके हम ना दे पे 1250 एरुआ बस ई औरत काके बगैर अनखिफ्त कर दिस अब देखो भैया चकलस जे अनखिफ्त करी से भाई बस ई ब्रीखा देर के ओही के कोलेका पकड़ के बंद कर दिस और 2 तारीख यूली के चल गए ओए में भैया चीजवा फॉर द रेक्टर चल गए हैं और बोले ना अफस्टिंग में द ओएम इज इन फॉर ही फॉरसीग्रीन स्टेल तो जोन जहलिया में बिरिखा दिरवन दूसर कोई के बन करत रहा अब अपरे जाए के ओमा बन है भैया देखो अब तो घूस लेवे तो भाई बताए सिपाही लोन हुआ बड़ी बनमासी करे है जेके तू सोचियो सुरिनाम देश में की सिपाही हमार बड़का कमरात है हमार बड़का दोस्त है हमें बस करम करेगा देखो वही सब कौन कौन धंधा यहाँ पे करे है तो गीता जी भी आ गए हमारे प्रोग्राम में और यहाँ पर जुड़ गए आप देखो भैया एक औरत बहुत रोवाई रोवे भाई इतना रोवे है कि हम काम बताई ओकर आंस हम देखेला तो हमार आंख में से आंस चुईया है तो बांची धो रहा ई औरत के बिचारी के और ले गए है एक आदमी पेंशन में तू जाने तो कहां पेंशन वन है भैया हीरा सुरिनाम देश के बांची धोवे है तो ले गए पेंशन में भैया और ई लड़किया के ले गए औरतिया के और इना है कि बहरे के औरत है या कोई रा ओकर फ्रेंडे रा भैया कई बरिस से संगे यानी 5 यार के उ सब के रिलेशन रहा 5 यार रिलेशन रहा और ले के पेंशन में तो यौरतिया के हुआ झगड़ा भइले तो अनमिया यौरतिया का बारे में संदलन करी से भैया पेंशन में परमारी बहु में और बताए गए हैगा बोले हैगा इंफॉर्मेशन बताए कोपल दान इन कायो कमरा हिर कर ले रहा और बोले इन खते औरत क्या रोवत गले रिसेप्शन लगे और बोले हम में तो सिपाही है स्काकल कर तो सिपाही गए ले तर प्लेक बोले हैगा अरे फिर द फरट्रॉकेट कोपल उतरे में कोपलवा चल गया भैया दोनों चल गए रहा लड़ोड़ के खतेखर फ्रकला दे तेखन उब दे रक्सी बोले द फ्राउ आन खाव की 5 बरिस हम रेले राची बा वा द आन लेनिंग फोड़ में सांदलिंग ना बताई सिपाही आवत आन हमें जेना दोनों में फिन सुमत हुई गए भाई वो दोनों फिन चल गए सिपाही कोई के ना पाई से लेकिन न्यूज में तो आई गए है दोस्तों ती बड़ी बड़ी दुख के बात है ये हैपन फॉर होल्डिंग विद ईमान यू होल्ड फॉर ईमान झगड़ा लड़ाई हुए है मैं इतना की ना तो कोई के में सांदलिंग कर और ई कोनो कोनो कोनो चाले भैया और मैं सांदल करिए पेंशन में अब आज पूरा दुनिया जान गए हैं अब ये प्रॉब्लम में परल है दोस्तों अब तो लोन जानो है भाई निकेरी के बड़ुकिया क्वारंटाइन और गयाना के हाँ तो भैया दो रोहित भी आ गया है हमारे दोस्त भैया रोहित देव नारायण भी आ गया है देहा एयरफोर्स खुद के मैनेजर है तो रोहित भैया यहां पर मेरे ख्याल से
हाँ

उछलते हैं अपना समाचार। तो हम जाए भैया गायाना और क्वारंटाइन के ओर, हम जाए ला निकेरी के ओर भाई, निकेरी के ओर हम जाए है। तो आप लोग जानो है चांद संतुखी मांगत रहा बुड़की बनावे, और बुड़की मांगता बनावे निकेरी से लेकर गायाना में। बड़ी खुशी रहा आदमी नोन कि कोई बुड़के, लेकिन रखेरी लोन जो रहा बहुत क्लाख करत रहा कि संतुखी मांगे बुड़की बनावे, मांगे बुड़की बनावे, बोले रास्ता बनाओ ई बनाव कि अब इस सिमोन्स और NDP रखेरी NPS रखेरी जल से तीसम बोले है बुड़किया चाहे दोरो बने के, बोले बुड़किया हम लोग के चाहे बनावे के। तो अब बात ई चीज भैले सिमोन्स गैल है और कहा बोले गयाना के मिनिस्टर से इरफान अली से बातचीत करी से प्रेसिडेंट इरफान अली से कि बुड़किया हम लोग खसामलक बना खोई गयाना से और वो काबले निकेरी निकेरी के।

तो अब काम भेल है चिनुआ भाई जो हम लोग के ओवी के मिनिस्टर है गा ओवी दया नाम का बोले है मिनिस्टर स्टीफन स्टंग बोले है नेशनल असेंबली में बोले बोड़किया बोले गयाना ना बोले फ्लोरिडा बोले हम नून बना कोई सरनाम के आदमी बनाई बोले हम लोग गयाना से पैसा बोले हम लोग फ्लोरिडा मांगेला अपने बनावे ई बात बोले है चिनवा ओवे के मिनिस्टर स्टीफन सांग बोले नेशनल असेंबली में बोले हम लोग अपने बनावे बोले अपने तौल धरबत एकर बारे में इरफान अली जो है इरफान अली हुआ से बमकल भाई कस के तू जाने लावला प्रेसिडेंट ना है गया ना के इरफान अली तो वो बमकल की ई कौन भाषा है वहां पे असेंबली में समय बतिया है बोले बातचीत भैले है कि निकेरी के ब्रुक्की जोन है गयाना के बोले हम लोग दोनों मिला मिल के बना कोई सरनाम और गयाना बोले ई जोन मांगे बोले ने बोले हमसे अस्प्रा के प्रेसिडेंट से सरनाम के और वो हैगा सिमोन से और बोले हम लोग के अस्प्रा के संघे बनावे हम लोग तो बोले कि कौन ची अभी बतिया है बोले ब्रुक्की चाहे खसामलक बनावे हम लोग के तो असेंबली बकेन करे बोले फलीरक हम लोग के मेडल से बहु हुई तो यहाँ पे जनता लोन बड़ी बड़ी चीज बतावे भैया असेंबली में बोले है और बहरे सोशल मीडिया बोले बोले कहे सरनाम अकेल मांगे ब्रोक किया बनावे बोले बौशे ब्रोक के तुल अपरे जाने कितना लगल हो कितना ढेर सबर खाई पी के बनाए बोले हूँ मांगे पैसुआ बनावे का की मांगे अकेल बनावे वो जो चिनुआ आधा पैसा मुझे गया ना जो आधा दे पैसुआ तब तो तुस लखवा ना बनाई पाइये यहू बतिया है तू सलखवा ना बनाई पाइये तो ई बतिया खातिन जनता लोन बोले है कि काहे मांगे सरनाम अकेल ब्रुकिया बनावे सलाख मांगे बनावे का तो गयाना के रखेरिंग बोले है का बोले हम उस तांत में हौद करेला क्वारंटाइन रिफीर के ब्रुकी गयाना से बोले हम लोग मिल के बनावे बोले परमारी बिफ ऑन फंगन ओवर मोगल का कुछ वे सकिंग ऑन दंस द बरिख तें सिरी नाम द बरिख फॉलीडिक सेल्फ विल फिनाशियरन एन बसितन बोले उसे मांगे अपने बसित करे अपने मांगे फिनाशियर करे और बोले है संग ही फिर खियाना तोर फ्राखन खलेत ऑन दैट द बरिख tot nu toe nog steeds werd gepresenteerd als een militaire megaproject tussen beide landen. Obole Hega, Guyana nog altijd uitgaat een gezamenlijke ontwikkeling. Quarantainebrug is een brug die gezamenlijk wordt besproken als een gezamenlijke project door de regering Guyana en Suriname, stelde Ali. Toen ik er bijna mee jijze rehi, hem betabe, bole he Jennifer Simon heeft begrepen dat Suriname bezig was deel van een bestaande juridisch kader af te ronden terwijl Guyana zijn administratieve voorbereiding al had afgerond. Oh, Suriname kan hem bij administratie tiek zo hoewe he, waarop ik kego kam karten, ik kego admi dubbele tintingo salaris he, ketra admi buitenland me he, or ook salaris ek bhau he, en waar administratie na jane he, kak remia kaan he, काम पे आवे कि ना आवे है तो एक बारे में और काम बोले है मिनिस्टर फंबेन लांस जाक कहेगा और मनीरस फंबे बोले है कि तो के जाए चुगली करे के बोले चुगली वाला चुगल खोरवन के बोले है रोहित चुगल खोरवन के बोले हमें तू बैल करके बताइए कि कौन अनमियन दुई गो तीन गो पावे है का बोले है सलारस बोले जो ने हम ओके पकड़ी बोले जो ने हम ओके पकड़ी बोले हमें बताइए गो दानो नीमल लाइस धरी से टेलीफोन नंबर बोले चुगुल खोरवन बोले बताइए मत तू जाने भैया चुगुल खोर बाड़ा ढेर दुनिया में ना अपने खाइन दो दूसरे के खाइन दी बाकी देश के चूसे है भैया तो बोले बताइयो तो ऐसे बतिया है अब देखो ब्रुकिया जो है 3.1 किलोमीटर के ब्रुकी रे भैया छोटा ब्रुकी ना है अति से ब्रुक फ्रॉम 3.1 किलोमीटर मुड फॉर आउटर द फेयर फॉर बीइंग तुसन सोड्रेन एंड सुरीनाम इन मोलिसन क्रीक इन गयाना vervangen. Ja, betaal je het project wordt gezien als belangrijk voor handel, toerisme en regionale verbinding tussen Frans-Guyana en Brazil. Je waren me bij hega, dosto. तो हम और आगे को अपना प्रोग्राम बोली ब्रुकिया के बारे में बता दें व निकेरी के भी हमारा प्रोग्राम सुने हैं और आप लोग को जरूर जानना चाहिए कि प्लानिंग हुआ कैसे एक सिपाही भैया चोर के न गैल है दागे इरमा राम तहल सिंह आपको भी स्वागत करते हैं फिर से एक बार हम यानी कि हमें फेसबुक हुआ निकार के फेंक दे रहा दोस्तों माइक बैनर अलवेर तो
सिपाही भैया ना गए ले चोर के दागे अपरे के दाग ले भैया सुरनाम के सिपाही के बाद बतियाई ला हमार जनता बोले जानी ये मुदी निमें से नहीं लख है हम नू सब के ना इट लख करी भैया जैसे समाचार तो बताई ला तो बताओ गए 26 तारीख नवंबर के एगो सिपाही भाई अपन पिस्तौल से अपरे आप के दागरे से फरकलाद दा था सुन दो द नारकोटिका ब्रिखाद वास अल्कोहल द ना दा थे में ड्रग्स इंसान बसी था सिपहिया बोले ओकर बेटवा के नारकोटिका ब्रिखाद जो ड्रग्स के बारे में ओकर बेटवा पकड़ ली से बोले द फ्राउ सोफिया फिया हैबर फॉर नोमन के ओकर बेटवा और फ्रेय फुटन सोडन वार्डन इन कस्टेल असे 2500 euro aan de politie betaalde. Na te ihe ekwa bhaiya ka bole he paiswa wala lekin jo sipahiya apre aapke daag iso ka haisla khawal tra bhai aur jai ke daag li se apre ke to dosto aur aage ko hum jana chahte hai aur ye baat hai admi bara jor ka sino jaye Suriname mein bhai ha

कैमरा में चाहिए पे को दरियंदार तखियार के चिनुआ बीते हुए हफ्ता में बोले होकर ताश जमा हजारन अमेरिकन डॉलर रहा बोले कैसीनो एगो दो मने स्ट्रैट में बोले हुआ से सबन चुराले से बोले जमा देर तक दैसन डॉलर रहा 10,000 एसआर दे रहा मोबाइल टेलीफोन रहा बोले हम खाली तसवा छोड़ के बोले हम गली टॉयलेट अरे भैया उतना पैसा छोड़ के तो के लगल हैगा टॉयलेट तो अपन तार छोड़िए तो तसवा जे छोड़ी बस दूसर कोई मार दे से चिनवा तू गधा बाटे कैमरा बेल ब्लैक दत मान द टास ऑप्शन स्कोट हाथ एंड दे इज अ तेजस दे लाम रुलेट ऑफ द ग्राउंड लीड फॉलन एन अंदर बसुक दे अख्तर हेमस्टोन हिव द टास मेस इन फुट ना से टू गट्रोकन एंड इज एर वervolgens मी vandoor gegaan. Familieleden van de man die eveneens in het casino aanwezig waren hebben niets gemerkt van de verdwijning. De politiebureau centrum. Ik er waren met khojmin kare de chinoa kal bane raha. Aur bole palwar na dekh pai sab to khali gutti taake hua bhaiya. To hiya bataye gaye hai dar ba bhai 50,000 SD bait gemaakt. Batawe hai ga afgelopen manger ke aangifte bhail hai. Dit keer werd een klant in de casino een 50,000 SD bait gemaakt. Ook dit onderzoek is een handig dus doe je dan een chori hoi chukal bhaiya. Biti u hapta me hua pe 50,000 SRD bhi chori hoi ge raha. To ye hai hamare bhaan janta. Hum sachi aap log ko ek geet hum suna di. Abhi ek ko gana na sunai li hai. Aur kon gana sunai ko chatni hum jaal suna.

दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है तो हमें तो रोकना पड़ेगा अभी, शायद और आगे को हम फिर से चला देंगे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेके, यानी कि समाचार काफी है भैया हीरा, आपको हम स्वागत फिर से एक बार करते हैं। और तो अब देखो हुआ है क्या भैया, सोमो हार्जो का बेटवा जाने पॉल सोमो हार्जो भैया बरोन तो रहा पे एल फ्राक्सी फोर से तो रहा फ्राक्सी लेदर रहा, तो ई आदमी फे यहाँ पे के ग्रुप में से फिर से एनडीपी में चल आए, अब फे यहाँ पे में ब्रंसवाइक से झगड़ा भैले, बड़ी बड़ी बातचीत भैले, बड़का बड़का बात बोले, अब एक के कहा बोले स्टार्स बस्कुल हिंग में मिलल है मुतर बेरे ओएम खान। अब बरोन तो का करे भैया, अंदाक बहुत रख करे है, एगो लेस ले फर करे से दे आना के जमा 200 नाम है स्टिक थिंग के, और बोली से कि जमा इन दिन द नेशनल बोले पे आर बवेर द एयर द दैट वाज स्ट्यूस इन होप फॉर स्ट्यूस लीडर फन ऑफ हैप्पी दिस इज द फोर रखे प्रयोग द फिया स्टिक थिंग इन दसन को जगह ले से, और बोले खाली 1000 डाला भरी से, बोले अब कोच हुए ना nuanceer de hey zijn eerdere uitspraak en stel dat hij de grondconversie door een bepaalde partij weer gebruikt om witwassen te faciliteren. Volgens de politicus gaat het om een eerste dossier en zal hij stap voor stap bolega septo ke batabe en ik er bare met je minister se van grondbeleid ke poochie se te bole abbe kuch na haiga jo nu sabke bewijs se ik blijf er bij de grondconversie door een partij weer gebruikt witwassen van de faciliteit. और बोले हैं एक बारे में फे यहाँ पे फ्रक्सी लेडर आशीष कुमार गयाधीन बोले हैं, बोले ये बहुत एरस्त का साक है जो समो हर जो आन हाल दर खरोन को फेर से दुर्बपाल पड़ते ही वेर खबर है फॉर द वेट वासन वाले दो इलेक्ट बोले फे यहाँ पे के आदमी खाली जगह ले से एक बारे में दे एना फोर सीटर अश्विन अनभीन बोले क्वालक दत है सोन इस प्राक में से हमर ही फलातन पसीरन, अब बोले इतना बड़का मुश्किल लग करी कि यहाँ पे नोन ऐसे करी से, अब बोले अश्विन अधीन बोले कुछ रा बोली से बाकी जोगी एगो चीज पूछी से रुके निकाल के बाहर कर दी से एंड दैट फिनिश ऑन एयर लक मेन से एक बारे में मिनिस्ट्री स्टैनली सूरो पावीरो जो खरोन खरोन बलाई फन बॉस बहिर के है वो मेरकर करे ऑफ द स्टिक वार ओवर सम हार जो है थी नोक ऑन द सोख मुतन वार्डन बोले बे चाहे सब ऑन द सुख होवे के, अब बोले लाइक के एज लेजर दिस वही के आदमी अन खसिन है ऑफ कॉम्प्लेक्स साकन खान सो से ने खफाल वर बे कॉन्फेर्सी heeft plaatsgevonden terwijl er rechtszaken gaande waren. Dus al zijn dit al afgerond, er kleven nog steeds problemen. Toen je baant hij zo'n harde kebetwa. Bronto, bhaiya, Bronto zit onder vier mensen, want hij, de lach van hem is er niet meer. Want hij moet bij de OM gaan, ook er op een zakje, bhaiya, kuketra paisa, fraudeer karisega. Dus dat zijn de zaken. Op deko, bhaiya, Tulonjano, Suriname, je stroomke paisa na bharie, de kaarten met kelwaarda kare, bhaiya, aike काट देवे बाकी द खरोस्ट वन बतालर इज द ओवरहेड इन सुरीनाम जो स्ट्रोम के पैसा ना भरे आशा जो स्ट्रोम के पैसा ना भरे आई के काट ना देवे है, बोले हम लोग काट स्ट्रोम हुए ना यहाँ पे बाकी यहाँ बतावे है का सबसे बड़का वन बला वन बतालर जो ने लांटी है जो ने ईवीएस के स्ट्रोम खबर है के कर पैसे ना भरे सेफ कोमा फेफ फिर तक मिलियन एसर दी अख्तर स्टान थेगा ओवर हेट ईबीएस के भाई इज द ग्रोस्ट वन बला वन बतालर, और बोले एक बारे में अन मिनिस्टर अन बोले है interim van een natuurlijke hulpbronnen wat hij gegeven heeft bolle hij aan de wet staatsbegroting 2026 mee karbare mee vitalize ki ABS inmiddels 745 miljoen bolle hij naar paise volgens huurbedrag de achtste stand bij de ABS, en bolle hij huur benadrukken dat de overheid alles in de werk moet stellen om de aanzienlijke betalingsachterstand weg te werken. Zij deed daarbij ook een oproep aan haar collega minister van de Financiën de plichting de USAP bolle hij otra paisa bolle na paise
EBS भैया और जो तू वहाँ पे 10 रुपया ना भरिए तो आई के बरौन पे आएंगे लेके खट से काट दे भैया से इखल कर दे और ऑफर है कि सिर्फ हों दे 100 मिलियन है ओके कोई कटवे ना करे है तो ये बात है। तो हमारा बहन मुन नारायण भी आ गया है और वो है पथवानी का से दोस्तों, तो आपको भी हम स्वागत करते हैं। हम चलते हैं अपना और प्रोग्राम के बारे में। तो यहां बताए गए हैं दोस्तों, यहां बताए गए तो लोग जानो है फिनिसवेला में मदुरा के जनवरी में 3 जनवरी का अमेरिका वही घर में मचे पकड़ ले गया रहा तो लोग जानो है। और फिनिसवेला में इतना काबल बवंडल चल रहेगा और बेफिंग रहेगा, बहुत ढेर आदमी मर गए हैं, हेल्प खोजे हैं और हम मदुरा खाली मांगे वहाँ पे निकले। अब मदुरे के आदमी फिनिसवेला के मदुरा के ऊपर शोल कर सेगा कि 5 आदमी के जान से मरवा दे इसे फिनिसवेला में। मदुरा जब यहाँ पे रहा अब ओकर ऊपर रेक्साख बोली सेगा, बोले अब तू पैसा भर, एक तो मदुरा प्रॉब्लम में अपरे है रेक्साख में और ओके और वही के देश के आदमी जाए के 5 थोप दे इसे। बोले हैगा 5 लंदन के ट्वीट जैसे सेफन 3 में ट्वीट जैसे इनन 20 में आई काबले मदुरा अब द्राख दे इसेगा एक स्पेशल एक्शन फोर्सेस के कि 5 लंदन के डाक के माढ़ा इसे एक्सक्यूजर करवा इसेगा। यानी कि मदुरा अब एक और बाग रहे में सब साख लड़े हैं मदुरा तो और बड़का प्रॉब्लम में पड़ जाए भैया। और बोले मदुरा एंड फ्लोरस अब खपाकिंग काराकास वो करोड़ के पकड़े रहा 3 जनवरी में अमेरिका से ट्रुप होकर घर में से ले गए रहा एंड एक पर वैदा नाना डिफरेंट स्टार्ट इन ओख फ्रा एंड से सीज दिल फास इन न्यूयॉर्क वार बाइडेन स्ट्राफ साकन अफवाहतन से है वही जनवरी बेहद इससे फर्स्ट फॉर रखते अनस्कुल्ड प्लेट। तो यहाँ बताए कि बड़ी लंबा चौड़ा होकर बारे में लिखल है दोस्तों, लेकिन मदुरा के बारे में हमें इतने बताया। अब जब ओके एस के सी सी के बारे में हुई तब तो और बड़का बातचीत हुई भैया। देखो गया ना छोड़ो हम जाए तरी नाफो के बारे में, नाफो भाई नाफो उक्रेन के सीफन तक मिलियार्ड फ्राई कर इसेगा तो ये देर तक लंदन नाफो के इस अंकारा में बताया इसेगा कि सीफन तक मिलियार्ड पैसा देगा उक्रेन के और का बोलेगा जो रसलान से लड़िया होकर अंडरस्टैंड करे के फील फॉर द हेल्थ इस ऑल द यूरोपियन यूनियन ऑफ द लंदन ऑफ सोंडक बलोव मार उक्रेन से बन खनोते विल्डन उक्रेन verzekering van een gestage stroomsteun en een bedrag daarom vastleggen in een slotverklaring. Of toen Lunjane Madura banai zo'n barca fabriek bij ja, daar hebben we drone uraai he, een drone uraai uraai van Rusland mee, hoe ik olie raffinaar de rij mee, dak ke plata kerde ze, en aanj Venezuela zo'n etra barca export land raha, तेल के ओके अपने ही आदमी को के तेल ना रहेगे है भैया बेचे के आदमी लोन 30 बोतल पावे 15 बोतल पावे लंबा लंबा रई में खड़ा है। तो लोन जानो एक जमाना रहा सूरीनाम में भी हम लोग रई में खड़ा होते ली तेल कीने के उस समय पे तेल स्कार्स रहा सूरीनाम में भैया बहुत उसके रखे रहेंगे बातचीत है। तो ये बातचीत है हमारे

ओहो जब तू मेरा नाम ना हमारा नाम ना जाने। एक बार फिर कहते ही जॉनी है हमारा नाम और सॉन्ग है रामदेव चैतू का। आते हॉट सॉन्ग मोख जल्दी ओके मेचे खा डांस मेंज़।

हो जा राम नाम का पक्का लो भी और क्या मनाए मायामी और रखा राम देव चैत्य के कुछ रीमेक सॉन्ग आपको हम और सुनाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं पारी करो रेवती राम रूप का गाया हुआ ये और सॉन्ग है आओ मिलकर लातवे बेचकान घूमे घूमे।

हाँ पारी करो और पारी करो ना वोट के पारी करो, ये गाना के नाम है रेवती राम रूप का और ये गाना है पारी करो चटनी रीमेक सॉन्ग है। तो हम फिर चलते हैं रेवती राम रूप की एक और हो जाए और वो भी एक चटनी जोगा शोगा।

रेवती राम रूप के आवास में आप लोग सुने हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम भी चलते हैं अपना देश की रामदेव जय दूर रे में। इस बैठक गाना

0: सुर में रमता जोगी राम के बाद में दोस्तों हम चलते हैं और फिर एक बार कहाँ चलते हैं और वो है राधिका की ओर। राधिका दिन बयाओ हॉट चटनी जोंग जल मोहो कमी चखा दान जमें से हम एक खान जुएंग और राल वार ये ओग बैंड माखवेल अलमाल अलेन बे रेडियो फाहोन
1: दिन वाका
0: ओ कहाँ दिन वहाँ गवाईले हैं
1: गवा कहाँ गवा
0: फुसूर फुसूर फुसूर
1: रती।

वो है रसिक रसिक रसिका दीनदयाल हॉट चटनी हमारे यारो, जो आपको हम आज सुनाते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं लोकल रामदेव चैतू।

और दोस्तों जैसे बताए गए आंशी हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

और दोस्तों हम सब चाहे हॉलैंड में है चाहे जोन आई संदेश में है लेकिन आप चाहे जहाँ जाइयो जा अगर कोई और आपको देखेगा तो वो जान जाएगा नहीं वो पूछेगा भाई आप कहाँ कहो तो आप कहेंगे हम हॉलैंड की तो बोले नहीं तो ये मैं अपन आंध्र क्लियर तब बोलियो ना ना ना हम सरेनामी हैं तो हमारा क्लियरचे से पता चल जाता है कि हम कहाँ के हैं दोस्तों ऑन दफ्तर यू खाल सेखे एक बेन खबर इन नीलांड यू खाल सेखे या एक बेन फन हीर एक बेन फन दार मार और स्प्रोंकलक हील फिर मैंने सेखे ये बेन फन इंडिया नहीं या नो मे फॉर ऑल्डर्स वेल एंड दार मार की सीकर ट्रस ऑफ सेन मैंने सो खाते तोख यू मार की सीकर ट्रस ऑफ सेन तो सुरिनामी जो आज हम आप लोग को सुनाएंगे और इसके बाद हम क्या सुनाएंगे दोस्तों आओ एक और सुना जाए मैथ यादगार ऑर्केस्ट्रा इन हॉलैंड टूर की ये जोंग है एंड इट्स एन हील फील फॉर ओंस कलाकार या सुरिनाम के कलाकार कितने इसमें मिल के ये गीत को गाए हैं और इस गीत ये इस लाइफ स्टेज सॉन्ग मीन्स En laten we even gaan luisteren. Het is heel mooi. Met voice of een virus. Uditram, Nisha Madaren. Auro Amadali. Surinder Sutal. Faris Barsati. En Yadgar Orchestra. Gestaan. Je giet kon je sub gaiet. Met alles erop en eraan. Chutney masala. Lekker raus. Zo naar jij.

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। जब अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिस राम खेलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिस राम खेलावन इज ऑन्स टॉपर, एन फ्रॉम द टॉपर्स नेचुरली द हेल मो यूनिवर्स फॉर ऑन्स सरनामी हैव गेसोन। एंड लेट्स वे फॉर गाना लिस्टर फ्रॉम क्रिस राम खेलावन।

Oh, wie kan het anders zijn naar onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunia mein nahi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. We have ook een Den Haag iemand die over Surinaamse lied hamar sarnami ke bhasa wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ऑनसे रबिन बलदेव सिंह. रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो Den Haag का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे दरहाख के रवीन बलदेव जी हैं। मैं से वहाँ नार ओन से फॉलोसलीत या दट मुद ओक कीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरनाम से फॉलोसलीत इन सरनामी हिंदी में, ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरनाम से फॉलोसलीत को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जों तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरिनामी गीत सुनाएंगे।

0: Blue Wonder. 100% krachtig reinigen, 100% geur. Wonderbaarlijk krachtig.
1: Yaniki, Guru Dutkala Singh bhi, ek Surinam kan, aur bahut bada kalakar the. तो इसके बारे में कितने लोग को तो पता है कि ये गुरुदत्त कला सिंह क्या है, कौन था. तो ये भी एक गीत को गाया है, हम हैं सरनाम के लड़के.

ये पुराना कलाकार है गुरु दत्त कल्ला जिंग का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम के, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौर क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपन स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला एंड लास्ट में से दैट इज निमत अंदर्स दन ओन से एक सूरीनामी हमारा दिए सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनंद रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है। और कोरोनी शर्मक्का सच्यानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा। और इन ईर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरनाम।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका यागनी क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ मैं।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती, और राधा और कृष्ण का जोड़ी आज तक दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

दोस्तों गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमीं पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

और दोस्तों तुमको देखा तो क्या हो गया है और गया है और

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुने द प्रेस रेडियो पर अनतिलक उक्त बिलोस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बतंग, जहां पर भी जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो मैथ हिल भी लश्तर प्लेजीर के साथ। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो या एक इवेंट ऑर्गेनाइजेटर, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आज श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, अब मात पर हम लोग बनाकर जितने बार आप चाहेंगे बंधु, उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटाइडेंस कंटोर यूरो अपने सीफन तक द्रीफेंसेस्टक 2277 या तो आप तार करें अपने सीफन तक 3276 2277 पर। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंटिनोखे लेत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 2277 पर या तो 2277 पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को दूसरा भाग हमारे सरनामी संगीत का, और वो है कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक। पुराने जमाने के महान गायक IDR 5-6-7-80 मैस्त्रो गुरुदत्त कल्ला सिंह जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे आ जाओ जाने मन, गीतों से मैं तुझे बुलाता हूँ। अ मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय मैस्त्रो हफीज खान वाहिद हुसैन विथ हिज मस्ताना ऑर्केस्ट्रा। एंजॉय।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को, महान गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का, एडीआर 50, 60, 70, 80 मैस्ट्रो गुरुदत्त कल्ला सिंह. म्यूजिक अरेंजमेंट कंपोज बाय हफीज खान वाहिद हुसैन विथ हिज मस्ताना ऑर्केस्ट्रा. अगला बयान सुनाने को जा रहे एक अति सुंदर डुएट है, तो ये हेल bekende en beroemde zangers en zangeres uit de jaren 70-80. The man with the golden voice from Holland. Telet Mahmoud Kewazmi, Kya Gatatha. Wim Demri en Gerda Sukram Milke sunate hai aap sabhi ko. गोरी चलो ना हंस की चाल. ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

के सेवा में पेश किया गया गाने वाला था महान गायक आईडीआर 87 विम दमरी और खैरदा सुखराम। एक और महान गायक आप सुनेंगे हमारे सूरीनाम देश का, जो काफी मशहूर हुआ था दादा हेमंत कुमार के आवाज में, और वो सुनाएंगे आप सभी को बेकरार करके। महान गायक आईडीआर 50 60 70 दौलत जुमराती।

Shabai, shabai, she beautiful song is unai aap sabhi ko Surinam desh ka Dada Hemant Kumar ke madhur awaz mein gaane wala The great Jumrati, Daulat Jumrati. अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को दो मशहूर गाने वाले हमारे हॉलैंडीज का आई डी आर 70, 80, 90 द ग्रेट गाने वाली सिल्वा के माय से बहुत ही मशहूर हो गई थी और बाद में ढेर सारे सुपरहिट सॉन्ग्स गाए खिस्तार्त मैथ हर करियर में द सेमी क्लासिकल ग्रुप फॉर्मासी Ishara uit Den Haag, later gezongen voor de Indian Diamonds, Mastana, Pandero, etc. etc. En ook heel veel live shows gegeven. De Melody Queen uit de jaren 70-80 van Nederland, Indra Ramcharan, Saat de Rahahe, Mashure Ganewala, begonnen op de drums bij Mastana Orchestra, later doorgebroken in de Indian Diamonds, de great singer Shahid Wahid Hussein. Deze twee op hun best. Milke Sunte Hai Jani Chaman.

Beautiful romantic song आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। गाने वाले थे शहीद वाहिद हुसैन और इंदिरा रामशरण, म्यूजिक बाय मुस्ताना ऑर्केस्ट्रा। दिस टू ऑप्शन बेस्ट आइडियार 80। समय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का ये सरनामी संगीत का प्रोग्राम। और आगे देखा जाए, कुछ बदलाव लाऊंगा प्रोग्राम में और वारा के मुताबिक कुछ नए नए आवाजें और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो जरा दिल थाम के बैठिए हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आ रहे हैं आप सभी के खिदमत में इस जमाने का द क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल जी का बिल्कुल नया सॉन्ग। साथ दे रहा है इस जमाने का जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द मैन विद द ब्यूटिफुल वॉइस द ग्रेट जुबिन नौटियाल। ये दोनों मिलके ये अति सुंदर बयान को गाए हैं। म्यूजिक कंपोज बाय जावेद मोहसिन एंड द ब्यूटिफुल सॉन्ग इज रिटन बाय रश्मि वीराग। पास तेरे मैं, आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Beautiful song आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया और गाने वाले थे जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल जावेद मोहसिन के साज और संगीत पर लेखक रश्मि विराक के अल्फाजे। अगला बयान तू है ब्यूटीफुल सॉन्ग कुछ नए आवाजें आप सुनेंगे। इस जमाने का मशहूर गाने वाला दर्शन रवाल और प्रकीर्ति गिरी ने मिलके गाए हैं ये अति सुंदर बयान गुरप्रीत साइनी के अल्फाजे। म्यूजिक कंपोज बाय दर्शन रवाल और लीजो जॉर्ज। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय सुनने वालों के नाम।

जान तू है। इस जमाने का मशहूर गायक दर्शन रवाल और प्रकृति गिरी के आवाजों में ये अति सुंदर बयान श्रोताओं ने

0: drijfveren stuurt. Daar komt die overredende stem vandaan. Daar ligt de kern van het leven. Daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelf. तुम्हें प्रिय श्रोताओं, अभी आप कुछ कहावते उदाहरण सुना जो मनुष्य मेंस हेत के बारे में जाता है. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Ja, zo meer lekker in bato komen ja, schotan ko sunaya ki kuch na kuch seekh in bato se hum log zarur seekhenge. एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम के ओर और अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को महान गायक इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी श्री सोनू निगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथ दे रही है दीपाली साथे. म्यूजिक और अल्फाजे है शबीर अहमद का. मिलके सुनते हैं खुदा तेरा भी है.
1: हाय.
2: नहीं,
1: यू नो देव, मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था.
2: बस कुछ दिन और.
1: तुम पहली बार मुझे छोड़ के गए हो.
2: I'll see you soon, okay?

0: De krachtige stofzuiger van Dyson beschikt nu ook over een dweilfunctie voor harde vloeren. De nieuwe roterende dweilborstel.
1: Ati sundar bayan shrutaon ki seva mein pesh kiya gaya khuda tera bhi hai the great Sonu Nigam aur beautiful gaane wali Deepali साथे के मधुर आवाज में ये चीज सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना शबीर अहमद के साज और अल्फाजे। एक और मशहूर गाने वाली उभरती हुई कलाकारा जो काफी नाम कमा चुकी है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कांजीलाल अरुणिता कांजीलाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे कुछ कॉफर्ट सॉन्ग्स जिसे आज फिर जीने की तमन्ना है और ढफली वाले

हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुने द प्लस रेडियो पर एनाटिलक उक्त बुलाइस्त्रफिया इंटरनेट के लेर द्वारा फाहुन एफएम पिन चैनल पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतीलक बदंत, जहां पर भी हो जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैं थेल फील लजर प्लेजीर के साथ। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक ऑर्गामन हो, इवेंटमेंट ऑर्गेनाइजर ऑर्गा वुमन ऑफ, आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं तो ज़रूर उसके बारे में कमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहर द्वारा, एंड यूरोप के कुछ शहरों में द प्लस रेडियो द्वारा आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम सुन सकते हो। तो आपका जो भी इश्तिहार है, या तो हस फरमाइश हो, जरूरी खबर हो, तो तमाम लोग सुनेंगे कि फाइन सस्ते दाम सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है मार्ग पर हम लोग बनाकर, और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप दायर करें टाइडेंस कंटोर यूरो अपने सीख तक। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो बेंटिनो खेलत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाएं। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अब 0703 63 98 90। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी साथ ही साथ मेंबर बनाएं। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एक ही नाम लेकर बढ़ते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ, और कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक सेलेक्ट किया हुआ हूँ और आज सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हॉलैंडिस रोटरडैम शहर का नौजवान कलाकारा मशहूर गाने वाली रोशना बालगोविंद जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे हंस रते। एंजॉय द म्यूजिक।

Beautiful song, wonderful song, covered song by Damien and Ashley, piarto ek din honata, music by maestros, King Selecta. अगला बयान है कि तरफ बढ़ते हैं यारो, जोर तोर से सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुन रहे हैं, कुछ भड़कता हुआ कुछ सोस मिला कर लाया हूँ आप श्रोताओं की सेवा में। एक अति सुंदर बयान द चटनी ब्लैम फ्रॉम सुजल उमराव आप सुनेंगे, क्या बात है, ऑफिशियल वीडियो फ्रॉम 2024, beautiful song special.

Hairi hairi belemua, naya chutney blam by Mashur Ganewala, Suriname Des Hollandese ka the great Sujal Umrao. बिकट ही सुंदर मजेदार सॉन्ग रख चुका हूँ प्लेयर में आप श्रोताओं की सेवा में, और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में किंग सेलेक्टा को, और वो सुनाते हैं भैया की छावड़ी के बबाल।

Yeah, but hey, beautiful song by King Selecta 2024, Chowri Ke Babal. पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है जोर तोर से सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुन रहे हैं। अगला बयान मशहूर गाने वाला इस जमाने का शर्विन तेजू को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को मिगारो।

शर्विन तेजू मजेदार सॉन्ग है, चुगुल खोर मत बनियो यारो। तो आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। दूसरा भाग इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम सूरीनाम। लेकिन अब वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने आजादी, फ्रय है, छुटकारा के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। ये अशोमेल लेकर के इन बातों से जरूर कुछ न कुछ हम लोग तो सीखेंगे। जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है यारो फ्रैंक फ्लॉयड राइट है वॉज एन अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड लीड फन 1867 टॉट 1959। और फ्रैंक फ्लॉयड राइट ने कहा है आजादी छुटकारा के बारे में यारो कि फ्रीहेट कॉम्ट फन बिनन। आगे में कहा श्री विल रॉजर्स है वॉज एन अमेरिकन एक्टर एंड ह्यूमोरिस्ट लीव्ड फन 1879 टॉट 1935। और विल रॉजर्स ने कहा है आजादी के बारे में यारो कि फ्रीहेट वर्कत नीट सो गुड इन द प्रैक्टिक अस इन टूस्प्राकन। आगे में कहा श्री फॉन्स जानसन है वॉज नीदरलैंड्स कबारेटी एंड लीव्ड फन 1925 टॉट 1991। और फॉन्स जानसन ने कहा है आजादी के बारे में यारो कि वनेर ये अस मन अन हेट टोनेल बेंट बेन ये ऑफ एन होमो ऑफ एन वेवन डीफ द एनिगे फ्रीहेड डी ये गलाटन वर्ड इस डीसे ये मग सेल्फ किसन। आगे में कहे श्री आइरिस मुर्डोख सै वॉज एन Iers-Brits filosoof en romanschrijfster en leefde van 1919 tot 1999. Our Iris Moerdog nekke hi hei azadike barimeroki. We zijn allemaal een gevangene, maar onze genezing heet niet vrijheid. Agame kahi hei Sri Rosa Parks. Zij was een Afro-Amerikaans politiek en burgerrechtenactivist en leefde van 1913 tot 2005. Oude Rosa Parks, Jean Kahihe, wel eentje om in te lijsten, Jaro. Ik zou graag bekend willen staan als een persoon die zich zorgen maakt over vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en welvaart voor alle mensen. Kja, wat wacht. Agamekaisri George W. W. Bush. Hij was de 43ste Amerikaanse president en geboren 1946. Oh, George W. Bush, nikaha hij azadike barmeroki. Je kunt democratie en vrijheid niet terugstoppen in een doos. Jean-Jacques Rousseau. Hij was een Frans schrijver en filosoof en leefde van 1712 tot 1778. O Jean-Jacques Rousseau, nekahahe azadike barimeyaruki. Laten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat die door zijn beschermende functie gelijkheid en vrijheid zal verenigen. Ook een hele goede hoor. Ethel Portnoy. Zij was in Amerika geboren Nederlands schrijfster en leefde van 1927 tot 2004. Ethel Portnoy nikahahe azadike barimeyaruki. Misschien is het wel helemaal niet zo goed om in alle openheid en vrijheid te worden grootgebracht zoals het tegenwoordig gebeurt. Want waar moet je je dan tegen verzetten? Waar moet je je dan jezelf en de waarheid op bevechten? Agamekaha hai mahan gyani श्री बराक ओबामा जी है वॉज द 44वें प्रेसिडेंट फन अमेरिका।
geboren 1961, uit Barack Obama Nikahahe Azadike Warmearuki. Vanavond hebben we wederom bewezen dat de ware kracht van ons land niet afkomstig is van de macht van onze wapens of de omgang van onze welvaart, maar van de voortdurende kracht van onze idealen. En dat is democratie, vrijheid, kansen en onverzettelijke hoop. Ook eentje om in te lijsten. Agimikasi Charles Gainsbourg. Hij was een Frans dichter, zanger, componist en acteur.

Başı जबरदस्त नगमा नूरी एक्स मैश आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया ऑफिशियल वीडियो आइट 2024 मैस्ट्रो संजय जोधा जी के मधुर आवाज में म्यूजिक बाय एक्सक्लूसिव। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का मेयर बकैंथास मिस्टर के फ्रॉम सूरीनाम कविश कालका जी के मधुर आवाज में आप एक जीवन का नगमा सुनेंगे। लेवन स्लीत एक प्यार का नगमा है ऑप्शन के स्टाइल फ्रॉम सूरीनाम।

Beautiful song, ik pjaar ka nekma hai, covered by Mr. KK from Suriname, Kavish Kalka ji ke beautiful awaaz mein ye cheez sundar bayan aap shrotao ne suna. To aaj ka is seen Sarnami Sangeet ka program pop music from Suriname aap sun rahe hai. Ek aakhri bayan aap sunenge, ek aur बहुत ही मशहूर गायक हमारे सुरीनाम देश का मैस्त्रो प्रशांत राम जतन के ब्यूटीफुल आवाज में संगीत बाय द जूनियर्स फ्रॉम सुरीनाम तेरी ओर.

Hi Rabba, beautiful song, music by the juniors. Aur gayak tha Surinam desh ka mashhoor gayak Prashant Ram Jatan ji. Tumhare pipri shrotaon, ye tak tha aaj ka ye sarnami sangeet ka program jo samapt hone ko aaya. अभी आप विज्ञापन सुनेंगे देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। आज से तो मित्रो लोकिस समर भी शुरू हो गया है ना, तो जरूर प्रोग्राम

फन होम टू हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

में जलती रही। क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है? और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहती है।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्मश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार माइज मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइटी मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार।

माइल की बुके आशा जी का ये दिल लेकर नजराना का ये सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं कोई जलवा का ओर, और वो है पद्मांश श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए, मूवी का नाम है दोस्तों।

अगर तेरी जलवा खुदाई न होती तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा न हो। बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों, नुपर मोफी है दोस्तों। तो ये गीत आपको हम सुनाए जाते हैं, आओ सुना जाए।

मोहम्मद रफ़ी, परमात श्री मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ मुकेश माई थी मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माई थी मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती सेफन तक का ये हिट सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं ढूंढता हूं किसको, ये आपको तो पता होगा, और हम भी है तुम भी हो। मैती मुकेश गीता दत्त का ये सॉन्ग है मूवी मूवी मूवी, राज कपूर।

मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मौफी के नाम है हरियाली और रास्ता सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ।

और एक लाइव सॉन्ग थे महेंद्र कपूर का सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, मूवी के नाम है हरियाली और रास्ता, जिसमें मनोज कुमार मल्हा सिन्हा ने काम किए हैं। करोड़ों का दिल चुराने वाला मैथी बुकेर ए नाइटिगेल लता जी का ये सॉन्ग है।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज़ की लय इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है।

0: सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फावन हिंदुस्तानी रेडियो है www.fawnfm.nl पर, वीफी रेडियो और तप रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 2 मिनट व्यतीत हो चला है, 8:02 ऊपर आख। और यह लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है दन हाग शहर से। जो बीमार है, लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे भैया जॉनी नंबर वन का। भैया जॉनी नंबर वन, आप बहिर जैसे धन्यवाद शुक्रिया कहा जा रहा है फावन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरे तरफ से। और मेरे सामने बैठे भैया यूसुफ, उनके तरफ से भी भैया जॉनी आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। बस आहिस्ता घर जाइए अपने फटफटी पर, कि मौसम अच्छा फटफटी के लिए। सोनदाग फेफ जुले है, यानी 5 जुलाई है, आप तत्पर है। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगा, शाम होगा, रात होगा, पता नहीं कौन सा समय है। बहरहाल आप जहाँ भी होंगे, आप सबको एक शुभ रात्रि शुभ दिन पेश किया जा रहा है फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, और आपका हृदय से स्वागत है। मैंने कहा जोनदाख 5 जुलाई है तो गीत गज़ल कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं। मेरे सामने बैठा भैया यूसुफ, अपनी आवाज़ सुना दीजिए। भैया यूसुफ, कैसे समाचार हैं?
1: सब ठीक ठाक है भाई।
0: पिछले सोनदाख के तू ना रहे?
1: नहीं।
0: ओ बाकी हमू ना रहे या मुझको खबर है
1: या
0: तो पिछले सप्ताह रविवार को हम लोग नहीं थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन वो क्षमा की कमी हम आज पूरी कर देंगे। उस दिन शायद आप सोच रहे होंगे गंगा भी नहीं है, यूसुफ भी नहीं है, तार किसे करूं, कैसे करूं, कब करूं, क्यों करूं। बहरहाल तार का नंबर आपको मालूम है, 0 3 5 6 2 2 6 4 तक, या तो 0 3 5 6 2 2 6 4 तक। वो कमी पिछले सप्ताह का हम लोग पूरी कर देंगे अवश्य। दुबल एंड द्वार से भाई यूसुफ, ओके भाई यूसुफ दंग के बहो। तो लीजिए पहला सिलेक्शन हम पेश कर रहे हैं, जिस समय आप कोशिश कर रहे हो तार करने को, तो और तार के नंबर ढूंढ रहे होंगे, तो सुनिए ये शानदार गीत। नेक दिन नेक न फिर तक से निकाल रहे हैं, देखते हैं फिल्म बरसात में से निकाले हैं ये शानदार गीत। सुन लीजिए इस तरह से लता जी।

जी आप बेकरार है, छाई बहार है, लता जी आपको सुनाए हैं निकती निघ्न फिर तक का ये गीत, फिल्म प्रसाद में से निकाले हैं, ये 1949 का शंकर जय किशन के साथ पर पेश हुआ ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अच्छा अभी नहीं, अच्छा जिस समय आप कोशिश कर रहे हैं तार करने को, तार है 9 से 7 तक 3 5 से 7 तक 2 7 तक 7 फिर तक या तो 9 से 7 तक 3 7 तक 2 7 तक तो चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, इस तरह से आ रहा है मुकेश जी।

0: लता जी और माइती मुकेश, ये दोनों मिलके आप हुए द्विवेद सुनाए। ये गीत हमने निकाले फिल्म बरखा में से चित्रगुप्त के साज पर और आपके लिए पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। तो चलो देखते हैं लाइन पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदा नाफंत।
1: अस्सलाम वालेकुम, राम राम और नमस्कार सत्क्रियाकार।
0: वालेकुम सलाम भैया, नमस्कार, कैसे समाचार है?
1: चले धीरे, कैसे सपनों?
0: बस चले धीरे धीरे, ऊपर वाला के दया से, आप लोग के कृपा से चले हैं
1: जी। वो तो रहेगा, चाहे भी चलावे के भी तो
0: मोई मोई मोई। भैया मोहम्मद बताओ कौन गाना मांगत रहते हैं?
1: गाना रहेगा फिल्म वक्त, मोहम्मद रफी गाए थे वक्त से दिन और रात।
0: टाइटल सॉन्ग,
1: टाइटल सॉन्ग रहेगा
0: वक्त से दिन और रात। हाँ, बहुत जबरदस्त गाना है,
1: विशाल गाना है।
0: हाँ,
1: और सब सुनने वालों के लिए, नाते लोग तो लोग के,
0: या
1: कभी वक्त आवे तब सब दूसरा रकम चले।
0: या दलसवार
1: बोलाओ के आसर जन्म चलाई।
0: हाँ, नाम मोई मोई। अच्छा बताओ कुछ धल्ले हैं?
1: हाँ, एक धल्ली वेल भाई।
0: बोल ब्रूर, हम लोग सुनी ला।
1: अच्छा,
0: बहुत बेचैनी से बोल।
1: अच्छा, ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात
0: नहीं,
1: जो दिल करने मोहब्बत वो दिल तेरे पास नहीं। अगर मैं होता बस है तो कानून ऐसा बना देता, दिल टूटने वालों को सास और मोहब्बत मौत
0: सास और
1: वालों को अनम सजा मौत सजा
0: सजा सजा मौत
1: मौत
0: दे
1: सुना दिल अनम दे ले।
0: हाँ हाँ, मोई नहीं प्रिमा। हाँ नहीं, हेल्प हेल्प मोई सवाल दे। और ऐसे भी कुछ भी सौंदर्य
1: ना, इतना भी सौंदर्य नहीं का कोई बपाल को हम पाइला तो हम लिख देला ना, हम ना भूल पाइला।
0: नहीं नहीं नहीं, बहन ना ना भी मोई गल एक कादे के हर हाल के लिए जाएगी।
1: हाँ, चाहे कभी चाहे ओके मोई से हम पढ़े के वहाँ तो जा रहे डीपी हिंदी और उर्दू,
0: हिंदी उर्दू मिक्स है,
1: मिक्स आएगा।
0: या नहीं
1: अब हम ओके उर्दू में लाइला ऑफ या हिंदी में, हिंदी हम ना जान ला, उर्दू जान ला वेल।
0: ओके,
1: जैसे वैसे हम कोशिश के ला उर्दू में अनुवाद कर।
0: ओ आ जाए, चिंता ना कर, नहीं कर,
1: हम कोशिश कर ला, उफर कर ला वेल कभी।
0: भैया मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपके भी, एक शुभरात्रि और सब सुनने वालों के लिए
0: जरूर। ओके,
1: और घर पे जाइए, मार सलाम बोल जे सब
0: बोल देबे जरूर। ओके,
1: हेल फील सक्सेस में द प्रोग्राम।
0: थैंक यू वेरी मच ब्रूर। ओके,
1: शुक्रिया
0: दा। ये था जनाब मोहम्मद दनहा के रहने वाला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदा नाफंत।
2: हुया नाफंत भाई मसीला,
0: खुद नाफंत सीला, कैसे रहले?
2: या खत खुदर भाई,
0: तब मोई सब कुछ प्रीमा?
2: या
0: बरखा और खाना बरसे है?
2: ना बिना बरसियो,
0: कल फोर हुई को थुना रहले, कहां भाग गए रहले?
2: वार वासिक नीत
0: तू ना बेल कर ले ओ ये वासर पहुँक नहीं था। ओ हमू ना रही ना, ओ ना तो ठीक है। हाँ, अब तू ना बैल कर ले, हमू ना रही ले, नहीं दान, नहीं दान से खुद, कोई शिकायत नहीं है।
2: अच्छा अच्छा,
0: और सब कुछ प्रीमा सीला?
2: या और भाई?
0: नहीं मोई सीला, बताओ कौन गाना मांगत रही ले सुने आज की रात?
2: फान हौरा ब्रेक, ये क्या कर डाला तूने?
0: अरे वाह, ये क्या कर डाला तूने?
2: हाँ,
0: रिखल
2: एस होत
0: ना, एस खुद ना है। तुको कहा हो तू, बोल ले तो बोलते। हाँ, देखे तो के दो हफ्ता तेहित रहा, हमू ना रही ले, तू ना रही ले।
2: अच्छा,
0: ना लिखले है
2: एगो है गा।
0: हाँ गो है, फिर मार आप चले दे।
2: या हेत मोय फन हेत लेफन इस रेक्ट फॉर या मार हेत मोय स्टफन हेत लेफन सेट इन या
0: Nah.
2: Want, hoewel iedereen ziet wat je doet, weten er maar weinig wat je waard bent. Leef, hou van lach, vergeef het, geniet van het leven.
0: Nou, Je hebt rechtstreeks in de roos geschoten.
2: Er is ook kleine wala.
0: Ah, kleine wala, wie zo'n lei?
2: Har din aata hai, har din jata hai. Mera dua rab se aap se wo sab kuch mile jo aapko dil chahta hai.
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद शीला. हमों को मिल जाए, यूसुफ के भी मिल जाए. नहीं थैंक यू वेल हेल खुद या इसको ना शीला हेल फील लॉयस प्लेजर एंड थैंक यू वेल फाइन ऑफ टॉट द फॉलो द केयर इसको ना. ये थी इबन ब्यूरो के रहने वाली शीला जी. तो जाइए सब, इस वक्त लाइन ठंडा है, आप तार कर सकते हैं 07-35-22-47 तो चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं लता जी की फिल्म असली नकली में से निकाल रहे हैं और देखते हैं. जी हाँ, 1962 का ये गीत, ये भी शंकर जय किशन के साज पर, चलो सुनते हैं.

तेरा मेरा प्यार अमर लता जी की आवाज़ में सुनाया गया। ये शानदार गीत हमने पेश की हो फुरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म असली नकली में से निकालकर शंकर जय किशन के साथ पर 1962 का ये फिल्म निकली ट्विन सेस्ट का ये फिल्म हमने पेश की। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो लोग चुन की हुई मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए पहला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है दनहा के रहने वाला जनाब मोहम्मद के लिए। भैया मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी दिया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो लीजिए भैया मोहम्मद आपके लिए ये गीत मैं चला रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त गीत है। ओपी नैयर जाने दे ओकर गुस्सा तनी नकिए पर रहता रहा तो रफ़ी से झगड़ा कर ले रहा। रफ़ी से बोले हम दूसर रफ़ी पैदा कर देंगे, लेकिन जिस समय फिल्म वक्त बना उनका दाल नहीं गला, आखिर में रफ़ी साहब को बुलाना पड़ा उसे इस ये गीत के लिए। कहानी और है अगर चाहोगे तब बताना तो हम आपको पूरा कहानी सुना देंगे बी आर चोपड़ा का। बहरहाल भैया मोहम्मद के लिए ये गीत चलाया जा रहा है शुभकामना के साथ। और भैया मोहम्मद ये गीत मांगे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए। तो लीजिए भैया मोहम्मद आपकी मांगी हुई गीत हम लोग पेश कर रहे हैं इस तरह से।

फिल्म वक्त में से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये शानदार गीत निगेतिन फैज में से अस्तक का है 1965 का, और हमने पेश की फुरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि दना के रहने वाला श्रीमान मोहम्मद ने ये गीत को मांगे हैं। भैया मोहम्मद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। ये गीत आपने मांगे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं की तरफ से और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से भैया मोहम्मद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं मैथ मुकेश, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और हमने कहा था कि ओपी नैयर, क्योंकि ओपी नैयर का एक गीत हमने रखे थे प्लेयर में इसलिए निकल गया मुख से ओपी नैयर, लेकिन हम कहना चाहते थे वक्त का प्रोड्यूसर, वक्त का प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा, हाँ उनका भी नाक बहुत नाक पर गुस्सा बैठा है, हमेशा रहता है, रहता नहीं रहता था कि क्योंकि अब तो वो नहीं है, बहरहाल बी आर चोपड़ा इस बदूलदार में। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

फिर तेरा मेरा किया और माइती मुकेश और शमशाद बेगम मिल के आपको सुनाए हैं, फिल्म शबनम में से निकाले हैं और ये गीत हमने चलाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि 2 मिनट व्यतीत हो चला है 8:30 2 मिनट ओवर ऑल ऑफ नहीं है, यानी 2 मिनट व्यतीत हो चला है 8:30 और आप तत्पर है जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं इपन ब्यूरख के रहने वाले शीला जी, माशुका शीला जी की तरफ से, उनके माशुक जो मेरे सामने सन्मुख बैठा हुआ है भैया यूसुफ के लिए, यानी माशुक यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए जी लीजिए शीला की तरफ से यूसुफ के लिए हम चला रहे हैं ये गीत। इस तरह से नहीं कहती अख्तम फाइफ तक का 1958 का ये गीत है हावड़ा ब्रिज ओपन नैयर के साज पर। शाजी है

क्या कर डाला तूने, आशा जी आपको सुनाए हैं और हौड़ा ब्रिज में से निकाल कर निकली अख्त फेफ्त का ये गीत और वो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम में चलवाया गया शीला जी ने, इबन के रानी वाले शीला जी ने। और ये गीत उन्होंने मांगे हैं मेरे सामने बैठा हुआ उनका माशिक माशुक यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ। तो माशुका की तरफ से माशुक के लिए एक शुभ रात्रि पेश करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी, आपको भी एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। चलिए इसके बाद हम चला रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से देखते हैं

हम तुमसे जुदा होंगे, हो के मर जाएंगे रो रो के। फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा में से निकाले हैं उषा खन्ना के साथ, पर ये फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इसके गाने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त गाने ये फिल्म में हैं। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है अलमेर, अलमेर के रहने वाली अंशला जी। अंशला जी, आपकी मांगी हुई गीत हम लोग पा गए हैं, बस सिर्फ चलाना बाकी है। अलमेर के रहने वाली अंशला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, अंशला जी नोहमास फन हार्द वेलकम एंड नित फ्रेसन खून दौड़ रहा फन। अंशला जी के लिए शुभकामना के साथ ये गीत इस तरह से आ रहा है गीत गजल के कार्यक्रम में।

0: प्यार कभी कम नहीं करना एंड इट लिस्ट इस ऑफ खुदराइत नाम इस फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो एंड इट वाज फॉर मुफरा आंशला एट अलमेरा अलमेरा के रहने वाली आंशला जी के लिए आंशला जी उम्मीद गीत आपको अच्छा लगा होगा एंड नोहमास फॉर हार्ट वेलकम एंड नीत वेक ब्लाइफन फॉलन द वेक सीकर बेलन मार आंशला एक हैव टॉक व्हाट टू फर्टेल अखतराफ दाख्त यू हैव एन हेल मोई स्टैम यू हैव द मोई रेडियो स्टैम जो तो दिन आके ब्यूट में रहते तो हम बोलती नो Kom maar een paar keer op van Hindustani Radio, maar Almere is veel te ver. Maar achteraf dacht ik, nee, Angela heeft een mooie stem. Dat kunt u wel weten. En u praat heel erg flink. Angela, dank u wel. Een fijne avond. चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद हम सब वापस आ रहे हैं बस हम सब यूँ गए हैं और यूँ आए हैं
1: गefunden laat ons nooit meer gaan Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: www.fahonfm.nl पर आप चून हैं जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है और भैया यूसफ आपका भी हृदय से स्वागत है और जो लोग तार किए हैं अब तक आप सबका हृदय से स्वागत किया जा रहा है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो घड़ी पे देखो तो करीबन 1:30 से चला है 9:00 जो लोग चून किए हैं और इस समय आप कोशिश कर रहे होंगे सोच रहे होंगे ढूंढ रहे होंगे कि तार का नंबर फाउन का कहाँ है तो लोग बता देते हैं 07-365-2247 या तो 07-365-2477 चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं भैया यूसुफ कोई है लाइन पर अभी नहीं अच्छा तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं इस तरह से आ रहा है मैती मुकेश the heart of millions ka ye bhi is tarah se.

0: ये वादा करो चांद के सामने लता जी के साथ मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। आपने पेश की हो फरफा हो हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म राज हाथ के ये गीत हमने पेश की। लाइन पर कोई है? फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदना आफंत खुदना आफंत भैया कैसे रहिले भैया?
1: हम या अथात अथात अथात कल यहाँ अपना रैला भाई यहाँ हम लोग के अतना कस कस यहाँ पर फिर वैरम दगा।
0: सॉरी सॉरी कौन सी बोले वक्ती
1: हम बोले कल यहाँ कतना हलचल रहा रात के।
0: ओ हाँ
1: यहाँ वसो अंगस्त वारसो अंगस्त हम लोग के यहाँ पर विशाल फिर वैरम दगे और हम लोग के यहाँ बरका रस्तवा नहर काद पर खाली ती ती ती ती ती ती रात भर सब ओ तो तीतर करके बड़का रस्तवा पर सब हेन वेर
0: या
1: एक खूब रात स्नल फॉर बैस
0: देंगे कोक
1: या एक खूब पर वन इस अपना सुधरे वाला है सब इसने है
0: ना वो सब फिल्मों आ देखी से को फिल्म रहा हम नहीं सुधरेंगे जैसे वही कितना सुधरी
1: है या
0: सब के वही हाल है
1: या यो सब के वही हाल कितना कर सकते हैं
0: और ना बोल सके कि फुटबॉल वाला बान कर दे कहीं कहीं होग नहीं दोन
1: नहीं नहीं कुछ ना कर सके हम लोग कुछ ना कर सकेला
0: जे बोली होके सब पगला फरकलार कर दे
1: प्रसीज सो इस दैट
0: या बोली ये होत नहीं तो अब दिस आर द टॉयस फ्रेंड्स
1: हां या
0: दैट्स व्हाई माया मेंटालिटी को हस्ती
1: या तो हां
0: व्हाट यू फन हाउस है फन हाउस इट हैव मी गॉट भैया तू कैसे रही ले?
1: धीरे धीरे चलावो या
0: ना ते एको स्टंग ए इधर के फेंटिलेटर का सामान धर दिए तो
1: या हमारे फेंटिलेटर क्या उधर में धरल है ओ स्ट्रोम लगी प्लस ये मुतनी तेरान वे ना तो खाली मंगे ओए के लगवा बैठे
0: तातिस गलवा
1: हां दिस दा रोम नीत वे ना क्या उधर में धरल बा ने बेटर हम जाई तो बालकन में बैठ जाई तनी
0: दैट इज द बेस्ट
1: हां फ्रेश लो
0: कौन गाना मांगत रहले सुने
1: एगो जोन हमारा गोए धरल रहा हम न जाने कौन गाना है
0: ओ बोले तुमने पुकारा कैसे
1: किसने पुकारा
0: तुमने पुकारा और हम चले आए वही
1: तुमने लिख ली किसने तुमने पुकारा
0: दिस फन फिल्म राजकुमार
1: ओके ओके दी हैव टू कॉफ सीरीज
0: नहीं प्रिमा अच्छा भैया बताओ व्हाट हैप्पी इन पे तो
1: व्हाट हैप्पी नाउ एक अपनी से एट अ मॉप टू से लाख मॉप
0: एक मॉप एक बनू बने उठ
1: हर पुरुष की यही कहानी हर पुरुष की यही कहानी घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी
0: नहीं मोय दैट इज इट
1: इट्स अ मॉप तो
0: या नहीं नहीं इट इज खोन खसेगद
1: या ओवर चेकड ऑफ इट लाइक वेल अ मॉप आई क्रिएट इट ओक नीस बट आई फिन सो ग्रापक
0: नहीं इट इज इनरदात ग्रापक हेल मोय फॉरवर्ड या और दल्ले
1: एंड द वर्स्ट डेज दिस इज ओक एन सॉर्ट मॉप थैंक यू एंड पूछते हैं कि शादी में फेरे लेते समय चक्कर नहीं आई तो बोले हैं उस समय नहीं आई
0: हाँ उस समय लाता राइल
1: पर शादी के बाद जिंदगी भर आती
0: या
1: बाप का घर बेटा का होता है लेकिन बेटा का घर बाप का नहीं होता
0: Ah.
1: Wat is die vraag?
0: Ja, ja.
1: Ah. Ja, is er een antwoord?
0: Ah.
1: Ja, baap ka ghar beta ke ho jata hai. Lekin beta ka ghar baap ko nahi hota.
0: No, no.
1: Yeah. That is an... yeah,
0: that
1: one dad was framed in house.
0: That is reality.
1: Yeah. This is okay. This had to go court and bole hai sab kuch upar wala dekhta hai. Sab kuch upar wala dekhta hai. To mandir aur masjid mein taale aur kamra kyun hota hai?
0: Yeah.
1: जो ऊपर वाला सब कुछ देखता है
0: या
1: दमो तो टोकनी चाहिए तो
0: या प्रेजेंस
1: पण मंदिर में तो भगवान सब कुछ देखता है दर्शन हो के कि कोई कुछ ना करे मार ताले कमरा सब कुछ लगते हैं
0: हां वो तो लगे हैं जरूर
1: तो सर के देंगे से ओक है
0: नहीं दैट इज इन दैट सो क्लॉक
1: या दैट इज ओक सो
0: नहीं खुद भैया दंकियवेल Ik wens jou een fijne avond, heel veel luisterplezier en,
1: ja,
0: straks,
1: zeker, zeker.
0: En straks misschien heel veel kijkplezier.
1: Ja hoor,
0: kijk,
1: ja,
0: je zo
1: ja, het wordt spannend vandaag.
0: Informatie heb ik voetbal geleverd, dat Jozef Rijek, die door Rajan Dwarka ze poetje gaat.
1: Ja,
0: zij zijn de voetbalmannen.
1: Ja, ja, ja, zeker, ah, zeker.
0: Bea, ik wens je een fijne avond.
1: Ja, jullie ook. En bedankt.
0: En tot de volgende keer.
1: Iedereen heeft veel luisterplezier.
0: Is goed, dan jij ook. Dag.
1: Ja, dankjewel. Fijne avond.
0: Je thie Bea Gajraj ji. Den Haag keer rehne wali. Oh, chalo, dekhte hain, Yusuf. Koi aur hai? Oh, cha. तो चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से और वो है मेरे सामने माशूक बैठा हुआ है यूसुफ इब्न बेरक के रहने वाला माशूक यूसुफ की तरफ से उनकी माशूका जो भी इब्न बेरक में बैठी हुई है सीला के लिए तो माशूक की तरफ से माशूका के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं इस तरह से आ रहा है यूसुफ की तरफ से सीला के लिए

0: एक ही तू धनवान बाकी सब कंगाल, पंकज उदास आपको सुनाए हैं। आइए शानदार गज़ल पेश हो फरफान हिंदुस्तानी रेडियो। और पेश करवाने वाला था इपन ब्यूरो के रहने वाला जनाब यूसुफ, माशुक यूसुफ की तरफ से, माशुका सीला जी के लिए, यूसुफ की तरफ से सीला जी के लिए शुभकामना के साथ शुभरात्रि पेश करते हुए आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदा नाफंत। हेलो
1: हेलो
0: या हेलो
1: या
0: खुदा नाफंत
1: हेलो हेलो
0: सो दख सिला।
1: अरे कैसे कैसे
0: बस चले धीरे धीरे
1: सुन ना कहाँ रही है तुम तो गणित
0: एक गाना है कि कहाँ भाग गए रहे
1: और हम एक स्पेशल प्रयोगिता इसको को मदीदा
0: नौ दस हेले देख लीफ मर हेले देख या मर
1: या ठीक है
0: नहीं आप लोग पर सोंदा के हम ही लोग के फादर दाख के वो फेशर आ हम लोग गए रहे हैं दुस्दार मारे खाते दूर के खेव है एक खाते के सेक्ट ये भी एक दूर या सो के न दालत यू ऑन खान इस मक अच्छा कोई बात ना है ओके और जितना कमी पूरा कर दे आलत आल मांग का मैं इंतखाम फंदाक खान सॉइफ
1: कि यूसुफ का फंदाक बैंक स्नेल टाइम से को मैंने कुछ करा ओके खान सिंह बोले अरे एक सेक द मैं टाइम से को मैं गला में योली इफ इफ इन वेला
0: नहीं तो खुद तू करा ओके कह रहे कह रहे
1: या फंदाक
0: कहाँ पर
1: इर इन रोटरडम
0: इन रोटरडम सेल्फ ओ ओके मोई नहीं मोई
1: आंगल
0: किशोर कुमार के रुक जाना नहीं रुक चलते रहिए जीवन चलते का नाम महेंद्र कपूर गाइस है
1: अभी ना जाओ छोड़ के के दिए अभी भरा नहीं
0: फिल्म हम दोनों
1: अभी अभी तो आई है बाहर बन के ना छोड़ रखे
0: हम मांगते रही ऑफ लेवल स्टॉप कर दे ले तू नहीं दैट इज मोई या
1: और मैं खुद दुमा नहीं थे
0: नहीं खून दूर खान मेट योर हॉबीज
1: इस या आई कैन कॉल
0: इट एंड दैट इज एन मोई हॉबी एंड कराओके सिंगर
1: या मत इट इज एक खुद है
0: कहां जाइए कोई के बैन लेवे बैन तो है ना कोई ना बजाए तो रे खतीन
1: एक दूत फॉर मी सेल
0: बस नहीं माई कान खून बे तो खान बस मोई तो
1: या इट हैव फना हिम मोप फॉर यू खतम इस तरह
0: खेव नहीं तो अंदर के इरशिला
1: अच्छा
0: बाकी बताओ कौन गाना रहा हां यूसुफ
1: या
0: यूस वेलकली था तो इरशिला जी
2: गाना के बोल है गाना के बोल है
0: कैन यू नॉट हियर सी
1: अरे अभी तो गईली
0: ओ वही वाला जाने क्या बात है ओके नहीं
2: प्रीमा
0: नहीं प्रीमा नहीं प्रीमा مفروشي نو يا هبت خين خسخت حساب سعودي
1: زي كده فاضل فاضل ليك هبقى كويس فريال
0: ابو خوالدك وبسين بنيوت هم هفته بهر اغورب
1: سچنا
0: ها
1: ايه بدانك يا ما بس ايفل لوك توخ
0: انا
1: كيف يوسف سكه
0: اها
1: بتجيلي موت دي ان بيل نمبر ستراكس ام بار كير ايفو امور
0: بول ها بولل كارير بولل كاريلا مو هو سكه हो सके है नेट साइट तू ना सुन ले रहे हो ये
1: ओ हम तो जान
0: अच्छा खेब नित खेब नित
1: अमा वन तो दिन ही समय सही रहे बोले तू तो ना सुनी ला मुझे सुबह में क्या हो
0: रहा हाँ या नहीं नहीं बोली ला बोली ला यानी हो जाए कभी कभी ये है तो नेट ओम खुरूप एंड द पर्सन इस नेट दाल खान छाऊं के एंड देन then if the person that need cover mak kut
1: okay okay okay hey it was lui
0: seeker vita
1: and drai mo moy nimmer for me
0: okay seeker vita
1: and you also an fine afan do the groete ook aan Josef
0: Zal ik doen. Jozef zoon, hè?
1: Oké.
0: Als ik er wel aan. Mevrouw Ursi, u ook bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: En de groeten, heel veel luisterplezier, fijne avond. En misschien ook heel veel kijkplezier, hè, meneer Jenny?
1: Kijkplezier?
0: Ah, voetbal, het hoor, Raadke.
1: Ja,
0: ja. Ik heb je zo niet, dat is bij je zo roe, denk ik.
1: Oh ja, kijk wel even hoor.
0: Ja, maar goed.
1: Ik zit wel, maar ik ben, ik ben geen voetballiefhebber hoor, maar kijk wel.
0: Is goed dan.
1: Ja, oké.
0: Mevrouw Ursi, dankjewel. Fijne avond daar.
1: Uitzending en ga zo door. Jullie zijn super.
0: Dankjewel. Bedankt voor de compliment. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dag.
0: Je thi Ursula ji Rotterdam ke rehne wali. तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो है देखते हैं देनहा के रहने वाली बेया जी के लिए बेया गजराज जी के लिए बेया जी शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए हम आपके लिए ये गीत पेश कर रहे हैं फिल्म फिल्म फिल्म राजकुमार में से निकालकर शंकर जयकिशन के साथ पर हम चला रहे हैं इस तरह से बेया गजराज जी के लिए

0: रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत पेश हुआ। गीत गजल के कार्यक्रम में हमने पेश की देन देखते हैं दनाख के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए। बेया गजराज जी, उम्मीद गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और शुभकामना के साथ ये शानदार गीत पेश हुआ दनाख के रहने वाली बेया जी के लिए। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। कौन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत? हेलो
1: बेया,
0: खुदनाफंत बेया, खुदनाफंत बेया हुई सदमत में मफरो बेया बेया फन उतर रख दें किक
1: या
0: हाँ अब जीस जना है या
1: या
0: बेया और कुछ नवा हाल
1: फंदा नहीं सोलो एक दाह तू तू इधर यार माँ बाई के उफले इधर उकर आज फरियारी रहे
0: ओके
1: तो या
0: ओके नौ दम ऐसे किसी के रही फील्स डायरेक्ट बेदी से अच्छा काकर जाए जिंदगी में सब हो गए करे नौ हिल फिर तरक तो फंदा अच्छा आज तो बिगल धीरे धीरे भैया वही तुम तो कहते ना मुई लग कर कोनो कहावत से कौन गाना मांगत रहे सुने भैया
1: जिंदगी क्या है गम के दरिया है
0: बड़ा सोच समझ के धल ले जिंदगी क्या है गम का दरिया है प्रीमा भैया या ओके मुफरो भैया थैंक यू वेल या ik ga het vandaag een beetje kort houden, omdat je in een heel andere situatie bent en dan nog heeft hij gedurfd om te bellen. Geweldig.
1: Ja. Nou, yes. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel Bea.
1: Fijne avond hoor.
0: Ja, jij ook. Fijne luister. Heel veel luisterplezier en tot de volgende keer Bea.
1: Ja.
0: Fijne avond. Dag.
1: Is goed. Dag.
0: ये थी बेया जी उतरेख के रहने वाली। तो देखते हैं घड़ी पर, हाँ धीरे धीरे वो भी अपना काम कर रहा है क्योंकि वो रुकता नहीं ना। रोतरदाम के रहने वाली अर्शीला जी, रोतरदाम के रहने वाली अर्शीला जी के लिए शुभकामना के साथ चलिए अर्शीला जी के लिए ये गीत हम चला रहे हैं। इस तरह से आ रहा है, एक शुभ रात्रि पेश करते हुए रोतरदाम के रहने वाले अर्शीला जी के लिए।

जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, लता जी आपको सुनाए ये गीत। और ये गीत चलाओ फरफान हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम में, जबकि रोटरडम के रहने वाली उर्शीला, रोटरडम के रहने वाली उर्शीला ने ये गीत मांगी है। उर्शीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने तार करके धन्यवाद दी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं को उर्शीला जी आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है बी बेया जी उतरा के रहने वाली। जी हाँ, बेया जी उतरा के रहने वाली। तो बेया जी शुभकामना के साथ तंदुरुस्ती दृष्टि पेश करते हुए, चलिए बेया जी के लिए हम चला रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गज़ल के कार्यक्रम में ये गीत उन्होंने मांगे हैं। बेया हेल फील स्टेरक्त डंक यू वेल अनफेन आफन देते शिवलीत आशुलीफ। फिल्म प्यार किया तो डरना किया, जी हाँ, फिल्म प्यार किया तो डरना किया, वैसे निकाल रहे निक दिन द्रिय शस्त्र का ये गीत।

0: फिल्म है प्यार किया तो डरना किया, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत। और ये गीत चला देखते हैं दनहा के रहने वाली, जी नहीं उतरख, उतरख के रहने वाली बेया जी के लिए। जी हाँ, उतरख के रहने वाली बेया जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए बेया जी, ये गीत आपके नाम पर हमने चलाए हैं। बेया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फोन हिंदुस्तानी रेडियो
1: खुदनाफंद मुफराव मिला।
0: हुई सिद्ध में मुफराव मिला।
1: या खुद और मैं
0: बस चले धीरे धीरे तुलक के दया से, ऊपर वाला के दया से चले हैं।
1: सब मोए
0: कैसे भैया मंसूर?
1: अच्छा है या
0: वो तो नहाए धोई के बैठा लो, ये बेबाल शुरू हुई
1: या दस क्रो या
0: या एक सूख फराख भी आलमारी
1: इधर आप
0: या अच्छा क्या कर जाए
1: या निकसान तो दूँ
0: या मुफ्रो बे या सॉरी मुफ्रो मिला बताओ कौन गाना मांगत रहे ले आज
1: फ्रॉम फिल्म अनमोल कैदी नूर जहां ये तो उसको सॉन्ग जवां है मोहब्बत।
0: अरे वाह क्या बात है, मिसाल गाना है
1: या
0: अरे सो का फेवरेट लीड फॉर मी।
1: Ik vind het zo mooi dat liedje.
0: Het is een heel mooi lied. En het

चलिए गीत थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रोक देते हैं। तो हम पेश कर रहे हैं सूतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए शुभकामना के साथ, और जनाब मंजूर के लिए आप दोनों को एक शुभ रात्रि पेश करते हुए शुभकामना के साथ, सूतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए और जनाब मंजूर के लिए। इस तरह से आ रहा है जमा है मोहब्बत, और अनमोल घड़ी में से निकाल रहे हैं, और है देखते हैं, हाँ इस तरह से आ रहा है। नूर जहान है

जवां है मोहब्बत, हसी है ज़माना, मीला जी के लिए, सूतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए ये शानदार गीत हमने पेश की फिल्म अनमोल घड़ी में से निकाल कर नौशाद अली के साज पर, और पेश करवाने वाली थी सूतरमेर के रहने वाली मीला जी और जनाब मंसूर। आप दोनों को फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पेश किया जा रहा है। चलिए आखिरी गीत बचा है और वो है आशा जी। आशा जी सुस्त के रहने वाली है तो लीजिए आशा जी शुभकामना के साथ सभी श्रोताओं के लिए इस तरह से आशा जी की तरफ से जो सुस्त के रहने वाली है। ये कौन थे आशा।

जिंदगी प्यार की गीत है, फिल्म सौतन में से निकाले हैं और ये शानदार गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जोंदा फेफ जुली यानी 5 जुलाई के कार्यक्रम में, गीत गजल के कार्यक्रम में। और पेश करवाने वाली थी सुस्त के रहने वाली आशा जी। आशा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये शानदार गीत पेश करवाने के लिए। यहाँ तक था यह कार्यक्रम जो मैंने पेश की। भैया यूसुफ तो चला गया, उन्हें कुछ काम निकल आया था इसीलिए वो 9:30 बजे चला गया। मैं भैया यूसुफ को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारा साथ हमेशा देता है और आज भी दिए हैं। और बाकी के कार्यक्रम में जो लोगों ने भाग लिए उन लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जैसे कि जनाब मोहम्मद दनहा के रहने वाला, इबन म्यूरख के रहने वाली शीला जी, और अलमेर के रहने वाली आंशला जी, और इबन ब्यूरो के रहने वाली यूसुफ जी, और दना के रहने वाली बेया जी, रोटरडाम के रहने वाली इर्सिला जी, और इधर के रहने वाली बेया जी, सूत्रमेर के रहने वाली जनाब मंसूर और मीला जी, और आखिरी में सुस्त के रहने वाली आशा जी। इन सब महानुभावों को हमें बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, शुभकामना पेश कर रहे हैं, शुभ रात्रि पेश कर रहे हैं कि अपना समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर वे लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में भाग लिए और कार्यक्रम सुने। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। आप सबको एक शुभ रात्रि पेश कर रहे हैं। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला दोंदरदाख। जी हाँ, आने वाला दोंदरदाख को 12 और 3 के दरमियान, रात्रि को नहीं दिन को, यानी 12:15 12 बजे दिन से 3 बजे शाम तक आने वाला दोंदरदाख को हम आपसे मिल रहे हैं।

तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मेरे बात आप सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद बाकी के कार्यक्रम हमारे सभी सहयोगी मिलके आपके सेवा में रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है, शुभ रात्रि फैन आफंत।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यू ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकान फन नहीं खतख और बलमा नहीं खत नहीं खतख का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो, दिल लगी ना किया करो।

0: किया करो एवरी गिन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हमें नहीं देखा कभी।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों, इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जांजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी के नाम है साजन और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

दर्द करने को ये सॉन्ग थे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार नेक तक का सोन और वो कुछ और थे और इन गोल तो और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जोंग और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लंजमल्लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और माइती मुगेश का ये

और दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना, और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आम सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 2 तक 7 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो कुछ नए कुछ पुराने गीत तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगे, चाहे श्रीनाम में रहोगे या जहां भी रहेगे, तेरे धड़कन से पहचान लूंगा अलका याग्निक कुमार शानू का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग थे। और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

बदल न जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं। मूवी के नाम है राजा निकंदीन 105 निकट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है, तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये जोंग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानु राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी के नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इज ओल्ड इज गोल्ड, अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरवानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नहीं खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी। इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड के ऊपर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही नार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मौफी के नाम था हीरो नंबर वन फन 1900 एन सी फन 900।

और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

और ऐ दिल मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बांध में। हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का, ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वेत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

और छोटी सी उम्र में रोग तो लग जाते हैं हमारे दोस्तों, और जब रोग लग जाते हैं तो वो कभी नहीं, मूवी का नाम है बैराग छोटी सी उम्र में। और नाइटी जी लता जी का ये जोंग थे जिसमें दिलीप कुमार और शहरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शहरा बानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बीत जाएगा और 17 बस 52 में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

0: तेरा नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

पीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंद जसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों अनहिट फिल्म जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

उनमें पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

0: और तुम इस तरह से और मेरे जिंदगी में शामिल जरूर होना।
1: तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

0: भाई जानी चमनी और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है।
1: जब सिमट के
0: ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त नई खतीन 165 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला जोंग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निमर तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए पदमाश श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरे अरे क्यों खफा हो गई है और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट इज ही मूवी फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे ओ हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श नहीं खती हों फन शस्त्र के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।